सुप्रभात श्रोताओ, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026 ईस्वी। सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिला

0: महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said,

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजीव कालिया का नमस्कार। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। उगते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ मंद मंद बहती प्रभात बयार के संग हम लेकर उपस्थित हैं। भक्ति श्रद्धा और आत्मिक शांति से सरोबार कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, भक्ति वह दीप है जो मन के अंधकार को दूर करता है, और जब मन ईश्वर के स्मरण में डूबता है तब जीवन की उलझने भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। प्रभु का नाम आत्मा का संगीत है, एक ऐसा संगीत जो भीतर विश्वास जगाता है, मन को निर्मल बनाता है और जीवन को नई दिशा देता है। तो आइए आज की इस मंगलमयी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता बुद्धि और सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के स्मरण से। कहा गया है, जहां गणपति का वास होता है वहां शुभता स्वयं मार्ग खोज लेती है। भगवान गणेश हमें यह संदेश देते हैं कि विवेक, विनम्रता और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि हमें गहराई से सोचने की प्रेरणा देती है और उनका सरल स्वरूप सिखाता है कि महानता सदैव विनम्रता में बसती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की पावन आरती।

ओशो तो अब बढ़ते हैं उस अलौकिक संसार की ओर, जहाँ बांसुरी की मधुर तान है, प्रेम है, करुणा है और जीवन का दिव्य संदेश है। भगवान कृष्ण जीवन जीने की कला है। उन्होंने गीता के माध्यम से कर्म का संदेश दिया और अपनी लीलाओं से प्रेम, मित्रता और धर्म की महत्ता समझाई। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान ये सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी जीवन को उत्सव की तरह जिया जा सकता है। उनकी बांसुरी हमें भीतर की शांति सुनने का निमंत्रण देती है। तो आइए श्री कृष्ण की मधुर भक्ति में डूबते हैं और सुनते हैं यह मधुर सुंदर भक्ति रचना।

और श्रोताओं, अब स्मरण करते हैं आदिशक्ति माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा केवल शक्ति नहीं, संवेदना भी है। वे साहस हैं, करुणा हैं, संरक्षण हैं और विश्वास की वह ज्योति हैं जो हर अंधकार में प्रकाश भर देती है। जब जब जीवन में भय, निराशा या कमजोरी आती है, तब माँ दुर्गा का स्मरण

आत्मबल बनकर हमारे भीतर खड़ा हो जाता है। मां की भक्ति हमें यह विश्वास देती है कि सत्य और साहस की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता है। तो आइए मां जगदम्बा की महिमा का यह पावन गान सुनते हैं।

श्रोतो, भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देते हैं। वे केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि भी देते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिल बताए। तो गुरु का जो सानिध्य है वो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। तो आइए गुरु महिमा को समर्पित ये भावपूर्ण भक्ति रचना सुनते हैं।

ओशो तो अब समय है उस अद्भुत भक्ति का जिसमें समर्पण है, शक्ति है और अटूट निष्ठा है। पवन पुत्र हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सेवा, विनम्रता और भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब मन में प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती है। उनकी भक्ति में साहस भी है और सरलता भी। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की भक्ति से ओतप्रोत ये सुंदर रचना।

तो श्रोताओं, इसी आध्यात्मिक ऊष्मा और प्रभु स्मरण के साथ आज के कार्यक्रम वंदना को यहीं विराम देने की संजीव कालिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन। विषय है भोजन ही दवा है। वाचक स्वर चैतन्य गुरु जी का है।
1: खाने के बारे में थोड़ा चर्चा करें। हकीकत में हम खाना इसीलिए खाना है जीने के लिए, लेकिन आज हमारा व्यवहार, हमारा जिंदगी लाइफस्टाइल जो खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए लेकिन उसका हम उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि खाना को दवा में कैसा बदले। पहला, जो एक्सेस कैलोरीज है, जो हमारा जो खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन,

0: वसा ये ग्लूकोज में बदलते हैं, और वाइटमिन्स मिनरल्स के साथ में ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन से टकराता है तब एनर्जी में बदलता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का खाना, वसा का खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर में जो कंजम्पशन है कैलोरीज के, उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो मोटापे में बदलता है। तो नंबर वन, कौन सा चीज़ में कितना कैलोरीज है और उतना ही जितना एक दिन में मेरा कैलोरीज का कंजम्पशन कितना है वो देख करके हमको करना चाहिए। अब बात रहा वाइटमिन्स की, मिनरल्स की, एंजाइम्स की। ये वाइटमिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स जब हम सब्जी को पकाते हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं। मिनरल्स भरपूर हमको सब्जियों से मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर का छिलका उतार देते हैं और जो अंदर का चीज़ों को हम तलते हैं यानी तो पानी में डाल के, कढ़ाई में डाल के उबालते हैं। जब ऐसा उबालते हैं तो वाइटमिन्स, मिनरल्स सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कच्चा सब्जियां और कुछ सब्जियां, जैसा यहाँ पर मशहूर है जो वंगा बोलते हैं, ऐसा चीज़ें छिलके समेत खाना बहुत ही आवश्यक है। और इनके साथ में अंकुरित खाएं सुबह नाश्ते में। इस तरह कुछ वेजिटेबल सलाद और फ्रूट सलाद, सुबह कोई भी पका हुआ खाना ना खाते हुए 4-5 बादाम रात को भिगा दें और 2 अंजीर रात को भिगा दें। इस तरह एक परिपूर्ण न्यूट्रिशन फूड ब्रेकफास्ट ये हो सकता है। ऐसे ही दोपहर को हम एक या दो रोटी खाएं और बाकी जगह पर इस तरह फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाड्स खाएं। और शाम को चाय के जगह पर अगर हम सुबह मुनक्का भिगा करके और उनको खाएंगे तो खास करके औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। और ऐसे ही रात को भी अगर हम पका हुआ खाना ना लेते हुए, अगर हम कच्चा खाना, अगर जिसको हम अमृतार कहते हैं, अगर इस तरह अगर हम खाएंगे तो हमारा, खास करके रात को पत्तेदार सब्जियां हैं जैसा पालक है, बथुआ है, मेथी है, ऐसा चीज़ों को खाएंगे क्योंकि उसके अंदर में भरपूर फाइबर कंटेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन जैसा दूर हो जाता है। और ख़ास करके उनके अंदर में जो हरा भरा चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस तरह सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा 3-4 बार अगर हम बिना पका हुआ एक अच्छा सब्जियां और फल, कुछ फल छिलके समेत, कुछ फल छिलके उतार कर, जैसा सेब जैसा, अमरूद जैसा चीज़ों को हम छिलके समेत खाने, पपीता जैसा, केला जैसा उनको उतार कर। केला को हम सुबह और दोपहर को खाना चाहिए, रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह अगर हम अपना खाने के प्रति ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शरीर के अंदर में तत्वों को बदलता है, तासीर बदलता है, बहुत कुछ हमारा शरीर के अंदर में फायदा हो सकता है।
1: श्रोताओं, अभी आपने आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन सुना। विषय था भोजन ही दवा है, वाचक स्वर चैतन्य गुरुजी का था। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे चैनल से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी का विषय रहेगा, फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। श्री रामचरित मानस का पाठ मानस गान कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज सवेरे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग 273 का पाठ। सामाजिक विषयों पर चर्चा और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुप्रभात होगा सवेरे 7:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे प्रातः 9:00। मरुमंगल कार्यक्रम में सवेरे 9:10 पर

0: आप सुनेंगे नेक मोहम्मद लंगा एंड पार्टी को। श्रोताओं, आज सवेरे 9:30 पर हम आपको नाटक सुनवाएंगे आखिरी चिट्ठी। इसके लेखक हैं डॉक्टर विशाल छाबड़ा और प्रतिभागी हैं नवीन सिसोदिया, रश्मि छाबड़ा, सुमन कमर, गुलशन मेघानी, रजनी मोदी, अक्षत चावला, देवेंद्र रोकड़ा, देव मेघानी और मोहनलाल। सुनना ना भूलिए आज सवेरे 9:30 पर नाटक आखिरी चिट्ठी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे प्रातः 10 और प्रातः 11। फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत होगा दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में लवणीय भूमि का सुधार विषय पर जानकारी होगी दिन में 12:50 पर। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे तनाव को कम करती है मुस्कान, बचत का महत्व, हीट वेव का बचाव कैसे करें और बेसन से बने व्यंजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर और उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे दोपहर बाद 3 से। नौजवान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5। कार्यक्रम पेश करेंगी पूजा वर्मा। जानकारी के विषय रहेंगे स्टूडेंट लाइफ की साथी पुस्तकें, हमारी भारतीय संस्कृति और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा। इसके अतिरिक्त अंकिता रोज की वार्ता होगी जीवनदायी वृक्ष। सराइकी प्रोग्राम का वक्त रहेगा 6:05। ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल संध्या 7। जानकारी दी जाएगी वर्मी कंपोस्ट, एक लघु उद्योग, मछली पालन, जैविक कार्बन, मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। कुछ भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 10। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओ, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरंतर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 US$ परिमितं अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 billion US$ परिमितं आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीय संघस्य सदस्य राष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं

0: कथं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादूननगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदम् ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे पञ्चशततोप्यधिकाः पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीयसैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्यपरम्परा अस्ति, अपि तु राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतनयात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा एचडी कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फप्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धम् एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाउध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीयदलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्या तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकासपर्यावरणव्यवस्थायाः वर्धमानशक्तेः प्रमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसन्धान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसन्धान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्रप्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति, तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एवास्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृङ्खलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से

0: हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Setabella off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Chartered Affairs in New Delhi. President Draupadi Murmu will review the passing out parade at the Indian Military Academy, Dehradun, today. This year's passing out parade is said to be historic, as for the first time,

0: क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो बीमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन आवे और पौधों तेजी हूँ बढ़वार करे इनमें भी नाइट्रोजन को संयोग हुए। बुनटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करें। अब आपा किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधांगो जिको पत्तियां हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियां छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को निकरे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी हुए बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव हुए। दूसरे पोषक तत्व की बात करें जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे। बुनटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चाले जी हाँ, फसल है बिंगी पत्तियाँ जी की है वह छोटी रह जाएगी और पत्तियाँ के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे भी आपा ने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करने वास्ते आपा ने फास्फोरस युक्त खाद जिया डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जांच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे इन वास्ते जिके समय आपा फसल की बिजाई करा भी समय ही फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा आपा पोटास की। पोटास जी की है बा पत्तियां गे माँ जी को भोजन बने बिने पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसलों में रोग ना लगे जिया पालो सूखो खराब ना करे बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिंगी गुणवत्ता ने कायम रखे। पोटैश की कमी को पतो आपने चले पौधो कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हो तनो कमजोर हो जाए और जिये तेज हवा चले तो पौधों नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटास की कमी पूर्ति करने वास्ते आपने पोटास युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटास को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता हुए। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट, लोह है, फेरस सल्फेट, मैग्नीज है वहाँ मैग्नीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटास बुआई के टाइम पर ही देना आप और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब से दो या तीन बार आपने छिड़काव करना होसी। किसान भाइयों आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आप सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा बी आप ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इनमें कमी है। तो अब मैं चालू राम राम सा।
1: श्रोताओं खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाई अभी उपयोगी जानकारी सुन रहे थे। फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व विषय पर और लीजिए अब सुनिए प्रभुराम के स्वर में एक राजस्थानी लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आपने प्रभु राम व साथियों के स्वर में राजस्थानी लोक भजन सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस का पाठ मानसगान कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगी भाग 273 का पाठ।

की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस का पाठ सुन रहे थे। मानस गान कार्यक्रम में आज आपने भाग 273 का पाठ सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। सुप्रभात के इस शांत, मधुर और सकारात्मक वातावरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, सुबह का समय अपने आप में एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। उगता हुआ सूरज हमें यह बताता है कि हर दिन जीवन को बेहतर बनाने का एक नया अवसर है, और जब सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। आज हम जिस विषय पर पहले बात कर रहे हैं वह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। तन चंगा तो मन चंगा। श्रोताओं, ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है,

लेकिन इसके भीतर जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा है। मनुष्य का शरीर और मन एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि एक स्थिति दूसरे को सीधे प्रभावित करती है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन अशांत हो जाता है, और यदि मन चिंतित और दुखी है तो शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। श्रोतो, आज का जो समय है आधुनिकता का समय है, सुविधाएं बढ़ी हैं, तकनीक बढ़ी हैं, साधन भी बढ़ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ तनाव, अकेलापन और मानसिक थकान भी बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन अपने आप से, स्वयं से जुड़ने का वक्त नहीं निकाल पाते हैं, और धीरे धीरे इसका असर जो है शरीर और मन दोनों पर दिखाई देने लगता है। थकान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा और तनाव, ये आज के समय की सामान्य समस्याएं बनती जा रही हैं। ऐसे में तन चंगा तो मन चंगा का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह जल्दी उठो, कुदरत के, प्रकृति के करीब रहो, शुद्ध भोजन करो और मन को अच्छे विचारों से भर लो। वास्तव में यही स्वस्थ जीवन का आधार है। और जब हम सुबह की ताजी हवा में टहलते हैं, योग करते हैं या कुछ देर ध्यान लगाते हैं, तो केवल शरीर ही नहीं मन भी हल्का महसूस करता है। सूर्योदय की लालिमा, पक्षियों का कलरव और मंद मंद बहती हवा हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। प्रकृति स्वयं में एक महान चिकित्सक है श्रोताओ। और लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक मधुर गीत के साथ और फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे।

0: शुदो अभी आपने शागिर्द फिल्म का नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोतो, आज विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि मानसिक तनाव अनेक बीमारियों का कारण बनता है। यदि मन लगातार चिंता में डूबा रहे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय हमारा प्रभावित होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसके विपरीत यदि मन शांत है, प्रसन्न है, खुश है तो शरीर भी जल्दी स्वस्थ रहता है। और यही कारण है कि मुस्कुराहट को सबसे सस्ती और प्रभावशाली दवा कहा गया है। एक सकारात्मक विचार, एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान किसी के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य केवल शरीर नहीं है। ये शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन इसके भीतर चेतना का प्रकाश है। और जब मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख जाता है तब उसे समझ आता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं है, अपने अंदर है, भीतर है। और भक्ति, ध्यान, प्रार्थना, सत्संग ये मन को स्थिरता देते हैं। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं या कुछ पल शांत बैठकर स्वयं को महसूस करते हैं तब मन की उलझनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। श्रोताओं, आध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है बल्कि ठहर कर जीने का भी नाम है। और आज लोग सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस सफलता को जीने का समय उनके पास नहीं है। बड़ा घर, अच्छी नौकरी और आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद यदि मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो जीवन अधूरा लगता है। सच्चा सुख संतुलन में है। काम भी जरूरी है, आराम भी जरूरी है और सपने भी जरूरी हैं, लेकिन अपनों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है। श्रोतो, एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाना होगा। समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, नियमित एक्सरसाइज व्यायाम करना और अपने मन में सकारात्मक विचार रखना और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना।

जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमारे भीतर भी एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है और यही मन की वास्तविक सेहत है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने हमेशा मन की पवित्रता पर बल दिया है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि मन मजबूत है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती हैं, और यदि मन ही टूट जाए तो सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। इसलिए अपने तन के साथ साथ मन का भी ध्यान रखिए, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, अच्छा संगीत सुनिए, परिवार के साथ रहिए, हंसिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद दौड़ में नहीं है, संतुलन में है। और यही संतुलन हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। तो आज की इस सुबह में हम ये संकल्प लें कि अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, क्योंकि सच ही कहा गया है, तन चंगा तो मन चंगा, और मन चंगा तो जीवन हर पल आनंदमय रहेगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस मधुर गीत के साथ।

शो तो अभी आया अपनी गैम्बलर फिल्म का नगमा सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नीरज के शब्द थे और एसटी बर्मन का संगीत था। शो तो इंसान के पास अनेक प्रकार की संपत्तियां होती हैं, लेकिन सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी वाणी मानी गई है। धन पद और शक्ति समय के साथ कम ज्यादा हो सकते हैं, परंतु मधुर वाणी वह खजाना है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देती है। और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। श्रोताओं, हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं होते हैं, वे हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। एक मीठा शब्द टूटे हुए मन को संभाल सकता है, निराश व्यक्ति में आशा जगा सकता है और बिगड़े हुए संबंधों को फिर से जोड़ सकता है। और वहीं कटु वचन वर्षों के अपनत्व को एक क्षण में समाप्त भी कर सकता है। श्रोताओं, आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, ऐसे दौर में मधुर वाणी का महत्व और भी बढ़ जाता है। घर हो, कार्यस्थल हो, समाज हो, हर जगह संवाद ही संबंधों की नींव बनता है। और यदि हमारी वाणी में विनम्रता और सम्मान होगा तो लोग हमारे विचारों को महत्व देंगे और हमारा साथ देने के लिए आगे आएंगे। वाणी मनुष्य को प्रगति के मार्ग पर भी आगे बढ़ाती है। श्रोताओं, एक अच्छा वक्ता, एक संवेदनशील शिक्षक, एक कुशल नेता या एक सफल व्यापारी, इन सब की कामयाबी के पीछे उनकी प्रभावशाली और मधुर वाणी का बड़ा योगदान होता है। मीठे शब्द लोगों के मन में विश्वास पैदा करते हैं, विश्वास से सहयोग मिलता है और सहयोग से सफलता के द्वार खुलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वाणी का बहुत महत्व है। हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है। जब हम प्रेम, दया और सकारात्मकता से बोलते हैं तो वातावरण में भी मधुरता फैलती है। और यही कारण है कि संत महात्मा सदैव मधुर वाणी और सत्य बोलने का संदेश देते आए हैं। और मधुर वाणी केवल दूसरों को ही सुख नहीं देती है, बल्कि हमारे अपने मन को भी शांति प्रदान करती है। तो हम इस नई सुबह में एक संकल्प लें कि हमारी वाणी किसी के लिए पीड़ा का कारण न बने, बल्कि प्रेरणा और स्नेह का स्रोत बने। हम ऐसे शब्द बोलें जो दिलों को जोड़ें, रिश्तों में मिठास खोलें और समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। और लीजिए, चलते चलते कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवाते हैं। मन मंदिर फिल्म का ये नगमा है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है।

0: श्रोताओं इसी गीत के साथ सुप्रभात कार्यक्रम से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार। श्रोताओ अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब समाचार होंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में

0: वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

0: अकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने

0: पर परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the

0: Look at today's newspapers. It's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sarabjit. Almost all newspapers today open with condemnation of US attack on ship with Indian crew. The Asian Age writes, India flays Hormuz ship attacks, US blames Iran. Hailing diversification of its energy basket, EAM calls out West's double standards on oil purchases, writes the Statesman. In the backdrop of US and Iran signing peace deal, war premium to peace dividend, stock surge, crude cools, and the rupee rebounds on hopes of easing tensions, reports the Financial Express. Termed as student-friendly changes, extra 15 minutes, more rough work space for students in NEET retest, informs the Hindustan Times. Rain, strong winds deliver city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman on its editorial page under the caption Demanding Proof writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flameback woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it open to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डीआरडीओ ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकतदारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज़्यादा वसी दिफाई शराकतदारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहाँ वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस 2 तरफ़ा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है کیونکہ اس سال بھارت فرانس تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری میں بدلنے کے بعد یہ جناب مودی اور فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے

0: दरमियान पहली दोतरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज़ बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकिद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तिराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां, सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक, मसनूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भारतीय वज़ीर आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्ले ग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुक ममालिक के साथ तआवुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रातिस्लावा से CM पल्लोरसी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी, क्योंकि पहली मरतबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमोशान तकरीब में 500 से ज़्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फ़ौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फ़ौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान अफसरान के नए सफ़र के आगाज़ की अलामत भी होती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाज़ों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिसे ज़्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिज़ाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निज़ाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल तक बैलिस्टिक मिज़ाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO ने एम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है, जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ ख़तरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिज़ाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिज़ा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि ये निज़ाम मिज़ाइलों के उभरते हुए ख़तरों से निमटने के लिए ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बात की और अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया, जिनमें 3 भारतीय मल्लाहों की मौत हो गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटाबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है। ये हमले नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। बहरी जहाज़ के हमले में 24 भारतीय शामिल थे, जिनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया, जबकि दीगर 3 मल्ला पहले लापता करार दिए गए और बाद में उनकी मौत की तस्दीक हो गई। इस वाक़े के बाद भारत ने वाशिंगटन के साथ अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया और नई दिल्ली में अमरीका के शॉज डी अफेयर्स को तलब किया। वजारत खारजा ने कहा कि उसने शहरी जहाज़ रानी के ख़िलाफ़ जानलेवा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बैनुल अक़वामी बहरी तिजारत की सेफ्टी, सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत को कम करते हैं। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमले के भारतीय अफराद को ले जा रहे मर्चेंट जहाज़ों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। जनाब जायसवाल ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की

0: अपील की है। भारत और बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सरहद पर अमन सुकून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तहीं अपने अज़्म को दोहराया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली के बीएसएफ हेडक्वार्टर में 8 से 11 जून तक डायरेक्टर जनरल सतह की 57वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और सरहदी सलामती और सरहदी इंतजाम से मुतालिक बाहमी तशवीश के मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकैन तालमेल पर मबनी गश्त, चौकसी बढ़ाने, हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले और सरहद पार जराइम नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरक कोशिशों को तेज़ करने से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज के मिज़ाइल निज़ाम की गैर मामूली कारकर्दगी से भारतीय दिफाई तहकीक और तैयारी को निज़ाम की बढ़ती ताकत का इजहार होता है। वजीर दिफा ने हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिज़ाइल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर DRDO DRDL में जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि DRDO की जानिब से तैयार करदा निज़ाम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी इको निज़ाम में मुकाबला आरई की भारतीय सलाहियत का मुजाहरा किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: वजीर दिफा ने तेजी से बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इर्तका पजीर जंगी हरबों की नौयत के पस मंजर में कौमी सलामती मफादात की हिफाजत के लिए लचकदारियत और जंग से बाज रखने की सलाहियत हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो एक वसीतर न्यूक्लियाई माहदे के तौर पर ईरान में न्यूक्लियाई तावुन के सिविल प्रोग्राम को तस्लीम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान अपने वो बुनियादी ढांचा मुनहदिम कर दे जिससे वो न्यूक्लियाई हथियार बना सकता है। ये वजाहत कल एक सीनियर इंतजामी अफसर ने की जिसमें एक मुजवजा अमरीका ईरान न्यूक्लियाई माहदे की तफसीलात बताई गई हैं। अफसर ने बताया कि इस माहदे पर महज चंद रोज़ में ही दस्तखत किए जा सकते हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के तकरारात से मुतालिक तरीक़ेकार का जायजा लेने के लिए भारतीय रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ कल आला सतही जायजा मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग के दौरान जनाब वैष्णव ने ज़्यादा शफाफ, दुरुस्त और टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने महकमा जाती इम्तहाना की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड की जानी मुंतकली की पेशरफ का भी जायजा लिया और कहा कि तकरारात के अमल को तेज़ रफ्तार, मौसर और उम्मीदवारों के लिए आसान बनाने के लिए और ज़्यादा टैबलेट पर मबनी इम्तहानात मुतारिफ कराए जाने चाहिए। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसूलों के तहत काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ हुई हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफ़र काफ़ी तेज़ रफ्तार रहा और यह सफ़र भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिल दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, माँ कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नो और अयोध्या में राम मंदिर का क़याम मोदी हुकूमत के काबिल ज़िक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूज़ियम ग्रांट स्कीम और सकाफती का कारकर्दगी नीज पैदावार से मुतालिक ग्रांट स्कीम भी है। इन स्कीमों से भारत के तहजीबी विरसे को तहफ़ देने में मदद मिली है और साथ ही साथ सकाफती तख्लीक और समाज के निचले तबके की इसमें शिरकत काबिल ज़िक्र है। ड्रामे से वाबस्ता यूनियन सोरखाइम्बम शरद चंद्र ने हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर किया कि उसने बड़े माली फ्रेमवर्क के जरिए खित्ते के फनून लतीफ़ा को मजीद मुस्तकम बनाया। आज भारत की ये मालामाल सकाफत न सिर्फ मुल्क में अपने जलवे बखेर रही है बल्कि उसकी रोशनी दुनिया भर में फैल रही है। न्यूज़ डेस्क से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सिडनी में भारत की PV सिंधु का मुकाबला आलमी चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया।

0: मैच की शुरुआत से अमेरिका मुकाबले पर हावी रहा। खेल शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबोडुइला ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। कुछ देर बाद पैराग्वे के डिफेंडर जोस कैसेरस को हार्ड फाउल की बिना पर येलो कार्ड दे दिया गया। इससे पहले मुश्तरका मेज़बान कनाडा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। कनाडा की जानिब से सैल लेरिन ने जबकि बोस्निया की जानिब से जोवो लुसिक ने 1-1 गोल किए। इसके नतीजे में कनाडा ने फुटबॉल आलम कप का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजाम इनकलाब ने बहर ओमान में एहतियाती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय जहाजरानों की मौत पर ज़ात खारजा की जानिब से एहतियात दर्ज कराने के लिए अमरीकी नाजिमुल उमूर को तलब किए जाने से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाये किया है। ज़ात खारजा ने उन्हें अब नए हुरमुज में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में भारत के खदशात से आगाह किया। इनकलाब ने कांग्रेस की लीडर मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज किए जाने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अदालत ने इस तरह की दरख्वास्तों पर समाअत न किए जाने का जिक्र करते हुए इसमें किसी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात का सबसे ज़्यादा मनफी असर तरक्की पज़ीर ममालिक पर पड़ता है। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिज़ाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजर्बे किए हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाज़ी हलाक हुए हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवज़ा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में PV सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 और 23 सेकंड हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

0: श्रोताओ, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा, नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
2: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने, 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी

0: छूट दी है, 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का

0: असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारा के शाहबाद कस्बे में कल दो घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है। वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज हमारे कलाकार हैं नेक मोहम्मद लंगा व पार्टी।

श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं नेक मोहम्मद लंगा व पार्टी।

शीश गुथावनी जा अरे समी ओ साहिब मारी छाती धड़का खा साजन गणेश।

साजन गली शकरी तो शामा मिली आसे अरे हसी अपने बोलिया नहीं जी हरी नीचा कर

श्रोताओं, अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे नेक मोहम्मद लंगा व पार्टी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक आखिरी चिट्ठी। इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर विशाल छाबड़ा। प्रतिभागी कलाकार हैं नवीन सिसोदिया, रश्मि छाबड़ा, सुमन शेखावत, गुलशन मेघानी, रजनी मोदी, अक्षत चावला, देवेंद्र रोकणा, देव मेघानी और मोहनलाल। तो लीजिए सुनिए नाटक आखिरी चिट्ठी।

कहते हैं एक सैनिक केवल सीमा पर नहीं लड़ता, वो हर दिन अपने परिवार की भावनाओं से भी लड़ता है। एक तरफ मातृभूमि का कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने घर परिवार का प्रेम। ये कहानी है कैप्टन अर्जुन की, जिसने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा सैनिक मरता नहीं, अमर हो जाता है।

0: बेटा, इस बार तुझे जाने देने के लिए मन ही नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों दिल बार बार घबरा सा रहा है।
1: मां, आपने ही तो बचपन से सिखाया है देश सबसे ऊपर होता है, और अगर आज मैं पीछे हट गया तो उस शिक्षा का क्या होगा जो आज तक आप हमें देती आई हैं।
0: मैं जानती हूं बेटा, लेकिन माँ का दिल भी तो आखिर माँ का ही होता है ना। जब खबरों में सीमा पर गोलीबारी सुनती हूँ तो रात रात भर नींद नहीं आती मुझे।
1: जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मां, मुझे कुछ नहीं होगा। आप क्यों चिंता करते हो?
2: आप हर बार इतना सहज होकर चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाता है, कभी महसूस किया है आपने?
1: रश्मि, सैनिक का घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, पूरा देश उसका घर होता है।
2: लेकिन उस पूरे देश में आपका अपना परिवार भी तो है।
1: और उसी परिवार की सुरक्षा के लिए तो मैं सीमा पर खड़ा हूं।
3: पापा, इस बार मेरे जन्मदिन पर जरूर आना, पिछले साल भी आप नहीं आए थे।
1: इस बार मैं जरूर आऊंगा मेरे बेटे, जरूर आऊंगा।

0: और तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा,
1: क्या?
0: अपने पापा का प्यार और क्या।
2: क्या सोच रही हो रश्मि?
3: कुछ नहीं, बस कभी कभी बड़ा डर लगता है अर्जुन। सच बताओ, क्या आपको कभी डर नहीं लगता?
2: डर हर इंसान को लगता है रश्मि। जो कहे कि उसे डर नहीं लगता वो झूठ बोलता है। लेकिन लेकिन फर्क इतना है कि एक सैनिक अपने डर से बड़ा अपना फर्ज मानता है रश्मि।
3: अगर कभी आपको कुछ हो गया
2: तो आंसू मत बहाना रश्मि। गर्व करना कि तुम्हारा पति उस मिट्टी के काम आया जिसने हमें जन्म दिया है।
3: बड़ी बड़ी बातें करना आसान है अर्जुन, लेकिन आपके बिना जीना शायद मेरे बस में नहीं होगा।
2: तुम्हें जीना होगा रश्मि, चिंटू के लिए, मां के लिए और उस वर्दी के सम्मान के लिए जिसे मैं पहनता हूं।
4: कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1।
5: अर्जुन, जल्दी लौट आना बेटा।
0: हाँ माँ, अभी तो मुझे चिंटू को बड़ा आदमी बनते देखना है माँ।
1: पापा, आप सबसे बहादुर हो ना।
0: नहीं बेटा, सबसे बहादुर तो वो होते हैं जो सैनिक का इंतजार करते हैं। क्यों रश्मि, सही कह रहा हूँ ना मैं?
3: फोन करते रहिएगा।
0: अरे इतनी चिंता मत किया करो, माँ और चिंटू का ख्याल रखना, और हाँ अपना भी।

0: यार अर्जुन, कभी कभी सोचता हूं क्या हमारी जिंदगी सिर्फ युद्ध के लिए बनी है।
1: अरे नहीं रवि, युद्ध तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है मेरे भाई। हम लड़ते इसलिए हैं ताकि देश के लोग चैन से रह सकें।
0: तुम्हें घर की याद नहीं आती?
1: हर पल आती रवि, माँ की आवाज, रश्मि की बातें और चिंटू की शरारतें, सब याद आता है। लेकिन जब तिरंगा आंखों के सामने लहराता है ना, तो सारी कमजोरियां ताकत बन जाती है मेरे भाई।

0: सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, दुश्मन ने पहाड़ी वाले मोर्चे पर भारी हमला कर दिया है। याद रखो, आज सिर्फ सीमा की नहीं देश की अस्मिता की रक्षा का सवाल है। एक भी दुश्मन, याद रहे, एक भी दुश्मन इस चौकी को पार नहीं करना चाहिए, समझे?
1: यस सर।
2: अर्जुन, सामने वाली पहाड़ी पर दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा।
3: संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते रवि, हौसले से जीते जाते हैं। जब तक इस शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, कोई दुश्मन इस धरती की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। उन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना है। भारत।

0: अर्जुन संभल कर।
1: अर्जुन अर्जुन तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें गोली लगी है भाई।
2: ये गोली मेरे लिए गर्व है कैप्टन।
1: अर्जुन
2: एक सैनिक के शरीर पर लगी गोली
1: अर्जुन
2: नहीं, कमजोरी नहीं उसकी बहादुरी की पहचान होती है।
1: अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं होगा,
2: जब तक सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगा।

0: अर्जुन, अर्जुन हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें चिंटू को बड़ा होते देखना है।
1: रवि, अगर मैं वापस न लौट पाऊं तो मेरी मेरी ये आखिरी चिट्ठी मेरे बेटे तक जरूर पहुंचे।
0: अर्जुन नहीं,
1: उसे कहना उसका पिता डरकर नहीं लड़कर गया।
0: अर्जुन नहीं,
1: और माँ से कहना उसका बेटा अपनी धरती माँ के काम आ गया है। रवि
0: नहीं, अर्जुन तुम ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो तुम?
1: देश हमेशा सबसे ऊपर होता है।
0: अर्जुन,
1: भारत माता की जय।
0: अर्जुन
1: की।

0: माता जी, कैप्टन अर्जुन की चिट्ठी आई है।
1: अर्जुन की चिट्ठी? मेरे अर्जुन की चिट्ठी आई है? पढ़ो बहू, क्या कह गया मेरा बेटा?
2: अगर मैं वापस न लौटूं तो खुद को अकेला मत समझना। एक सैनिक मरता नहीं, वो तिरंगे में जीवित रहता है। मां का ख्याल रखना, चिंटू को अच्छा इंसान बनाना। बेटा चिंटू, जिंदगी में कभी गलत रास्ता मत चुनना मेरे बेटे। सच्चाई और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। और अगर लोग पूछे कि तुम्हारे पापा कौन थे, तो गर्व से कहना, मेरे पापा भारतीय सेना में थे। और हां, मेरी कभी महसूस हो तो आसमान की तरफ देख लेना। मैं किसी सितारे में मुस्कुराता हुआ मिल जाऊंगा। तुम्हारा अर्जुन।
3: आज हम सबकी आंखें नम हैं, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा भी है। इस मिट्टी ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने अपने प्राणों से भी अधिक अपने देश की आन बान और शान को महत्व दिया।
4: कैप्टन अर्जुन,
3: बहन जी, आपने सिर्फ अर्जुन को जन्म नहीं दिया, आपने इस देश को एक सच्चा सपूत दिया है। हर माँ अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहती है, लेकिन आपका बेटा तो अमर हो गया। आने वाली पीढ़ियां भी कैप्टन अर्जुन की वीरता और बलिदान को याद रखेंगी।
4: कैप्टन अर्जुन अमर है। कैप्टन अर्जुन अमर है।
3: और इस गांव का प्रधान होने के नाते मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप कैप्टन अर्जुन से प्रेरणा लें। कैप्टन अर्जुन जैसे वीर इस देश की असली पहचान है।
5: कैप्टन अर्जुन
4: अमर है।
5: कैप्टन अर्जुन
4: अमर है।
1: बहन, मेरे तो कोई औलाद नहीं है, और सच कहूं तो आज तक मुझे इस बात का इतना दुख कभी नहीं। काश मेरे भी एक बेटा होता तो मैं उसे भी अर्जुन की तरह तेज सेवा में अर्पित कर देती।
6: अर्जुन सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो इस मिट्टी का लाल था। बचपन से ही उसकी आंखों में देशभक्ति का जुनून दिखाई देता था। जब उसने पहली बार सेना की वर्दी पहनी थी, उसी दिन मैंने समझ लिया था कि अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं रहा, पूरे देश का हो गया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका साहस, उसका बलिदान और उसका नाम

0: हमेशा जिंदा रहेगा। अगर अगर अगला जन्म मिले तो मैं फिर उसी अर्जुन को अपनी कोख से जन्म देना चाहूंगी, उसी अर्जुन को अपनी कोख से जन्म देना चाहूंगी।
1: मैं भी बड़ा होकर अपने पापा जैसा सैनिक बनूंगा। मम्मी, मुझे पापा जैसा सैनिक बनाओगी ना? बोलो ना मम्मी, बनाओगी ना?
2: हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पापा जैसा वीर सैनिक बनाऊंगी। तुम्हें इतना साहसी बनाऊंगी कि देश का तिरंगा देखकर तुम्हारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाए। और एक दिन जब तुम अपने पापा की तरह वर्दी पहनोगे, तब मुझे लगेगा कि अर्जुन

कुछ चिट्ठियां केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होती, वे भावनाओं, त्याग और बलिदान की अमर गाथा बन जाती हैं। कैप्टन अर्जुन की आखिरी चिट्ठी भी ऐसी ही एक अमिट कहानी है, जिसमें एक सैनिक का अपने परिवार के प्रति प्रेम भी है और मातृभूमि के लिए समर्पण भी। ये चिट्ठी केवल अर्जुन की आवाज नहीं, बल्कि हर उस सैनिक की आवाज है जो अपने घर की खुशियों से दूर रहकर हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करता है, जो अपने सपनों का त्याग कर देता है ताकि देश के करोड़ों लोग चैन की नींद सो सकें। ऐसे वीर कभी मरते नहीं, वे इतिहास बनकर सदैव

शो तो अभी अपनी हकीकत फिल्म का देशभक्ति नगमा सुना। स्वर मोहम्मद रफ़ी और साथियों के थे, शब्द रचना कैफी आज़मी की और संगीत मदन मोहन का था। लीजिए अब सुनिए कर्मा फिल्म का ये देशभक्ति गीत।

0: श्रोताओ, अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: रेशम की डोरी

श्रोताओं, अभी आपने रेशम की डोरी गीत सुना, साजन फिल्म का। स्वर था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था। लीजिए अब सुनिए, जाने अनजाने फिल्म के लिए मन्ना डे को। गीत SH बिहारी का है, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: श्रोताओं, अभी आपने यादों की बारात फिल्म का नगमा सुना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी, संगीत आरडी बर्मन का।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है कभी कभी। बोल साहिर के हैं, संगीत खयाम का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए अनपढ़ फिल्म के लिए लता मंगेशकर को, शब्द रचना राजा मेहदी अली खान की और संगीत मदन मोहन का है।

श्रोताओं, अभी आपने अनपढ़ फिल्म के लिए लता मंगेशकर को सुना, और लीजिए अब सुनिए मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओ, ये फिल्मी नगमे इस समय आप आकाशवाणी के कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संजीव कालिया। लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए कटी पतंग फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत आर डी बर्मन का।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अली जी, श्रोताओं, आप सुनिए, उमरावजान फिल्म से इस रचना में आशा भोंसले को, शब्द रचना शहरयार की है और संगीत खयाम का।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए आंधी फिल्म के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। शब्द रचना गुलजार की है, संगीत आर डी बर्मन ने दिया है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए, सूरज फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी को, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का है।

और लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए द ट्रेन फिल्म के लिए मोहम्मद रफीक को गीतानंद बख्शी का है संगीत, आर डी बर्मन का।

और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए घर फिल्म के लिए लता मंगेशकर को, शब्द रचना गुलजार की है, संगीत आर डी बर्मन का।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लीजिए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं चलते चलते फिल्म से। मिली जुली आवाज़ें अभिजीत और अलका याग्निक की है। जतिन ललित के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जावेद अख्तर ने।

लीजिए अब सुनते हैं दिल का रिश्ता फिल्म से ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की मिलीजुली आवाजों में। समीर की शब्द रचनाएं और संगीत नदीम श्रवण का है।

लीजिए अब सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत राजेश रोशन का है।

लव फिल्म से अभी गीत सुन रहे हैं आप एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की मिलीजुली आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है आनंद मिलन ने।

ये गीत हमने मन फिल्म से लिया है। आवाज़ उदित नारायण की है। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है संजीव दर्शन ने। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इश्क फिल्म से। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

ली जब सुनते हैं गुलाम फिल्म से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है जतिन ललित ने।

लीजिए अब सुनते हैं दीवाना मस्ताना फिल्म से ये गीत उदित नारायण, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

लीजिए अब सुनते हैं लकी अली और सुनीति चौहान की आवाज़ में ये गीत सुर फिल्म से। नीदा फाजली के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है MM करीम ने।

लीजिए अब सुनते हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म से ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की। आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 12:30 पर, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें, और सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। खेत खलियान किसान श्रोताओं का ये कार्यक्रम सुन सकते हैं आज दोपहर 12:50 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा लवण्य भूमि का सुधार, और कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वर्मी कंपोस्ट एक लघु उद्योग, मछली पालन और कैसे है जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी, और साथ ही बाजार भाव व मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे वेद प्रकाश वर्मा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं आज दोपहर 2:30 पर। शाम 7:45 पर फिल्मी गीतों पर आधारित भक्ति संगीत होगा, और एक ही फिल्म से जानकारी और गीत होंगे रात्रि 8 बजे। महिला जगत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज दोपहर 1:05 पर। इस कार्यक्रम के विषय रहेंगे तनाव को कैसे कम करती है मुस्कान, बचत का महत्व, हीट वेव से बचाव के उपाय और बेसन से बने व्यंजन। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति किरण कुमारी की रहेगी, और साथ ही इस कार्यक्रम में होंगे कुछ चुनिंदा गीत। युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी स्टूडेंट लाइफ के साथ ही कैसे है पुस्तकें, हमारी भारतीय संस्कृति पर चर्चा, जाने वर्ल्ड वाइल्ड वेव को, और साथ ही महात्मा गांधी के जीवन के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा, और आज के इतिहास पर भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में वार्ता भी होगी जीवनदायिनी वृक्ष पर, वार्ताकार होगी अंकिता रोज, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति पूजा वर्मा की रहेगी। श्रोताओं, हमारी आज की सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर, और ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

जी हाँ श्रोताओं, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्मृति का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवाएंगे आपके व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। ये पहला संदेश हमें भेजा है बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलिका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांशी वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा, कीर्ति सिदक और प्रियांशी वर्मा ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। सिद्धार्थनगर दयारपुर बाबली से गजयन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। ये फरमाइश हमें मिली है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्शपाल जोसन मेलबर्न और रॉबिन सिंह जोसन वेकफोर। अगली फरमाइश हमें मिली है गांव खोकरावाली श्रीगंगानगर से विनोद पारसा, विशाल पारसा, विकास पारसा, रोशनी और शगुन की। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है सौतन की बेटी।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया जालंधर से, बागपत उत्तर प्रदेश से। ये हमारे श्रोता है संजय ढींगिया, नमन अपार। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ये फरमाइश आई है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुनत की। ये फरमाइश है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी की। ये फरमाइश आई है फवारा चौक वार्ड नंबर 6 ग्राम पंचायत सिरसला जिला चुरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, सोमल, कार्तिक। ये फरमाइश है फाजलिका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माँ विद्या देवी और सारा मायल की। ये अगली फरमाइश हमें मिली है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। हमारे श्रोता है विक्रम कटवासा, सचिन, सतीश, योगेश, उद्धव, किरसन मायल, हनुमान सारण, किडूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा की। गांव पचोनिया जिला जालौन से ये हमारे श्रोता है सत्येंद्र कुमार, चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से हमारे श्रोता है जगदीश ढूकिया, प्रमिला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, सायना, विष्णु और ईवा की। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं रुदाली फिल्म से।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है गांव रायन डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल की, पिमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत और विक्रम जयपाल की। उत्तम नगर दिल्ली से ये हमारे श्रोता है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। चक 14 पीएसपी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह और मनराज। संगरिया से ये हमारे श्रोता है श्याम मीढ़ा और सुमन मीढ़ा। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवया मल्होत्रा, भाई सूचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। गांव बांडीवाला फजलिका पंजाब से हमारे श्रोता है ओम बागड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा। ये फरमाइश हमें मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से ये हमारे श्रोता है सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। चक 10 एसडीपी लालजट जाटन से रामेश्वर जी, नारायणिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और ब्रजलाल जी। ये फरमाइश हमें मिली है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया की। श्रोताओं, आप

श्रोता अभी अनुरोध गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। ये संदेश हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का। ये संदेश आया है गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका, मनीष और ये संदेश है आसाम से हितेंद्र दास का। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, गांव फ्रांसी जिला हिसार से ये हमारे श्रोता हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, बुलढाणा वर्चिंगी महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता हैं अमोल, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत गुर

कीरत और गुरशप सिंह राहुल का। ये हमारे श्रोता है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम, पलक लुबाना और यश मंसूरी का। नई बस्ती गंज टूडावारा से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी का। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ब्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार, मिसेस संतोष साही, राजश्री और गौरव साही। ये हमारे श्रोता है करणवीर हाउस बूचो केंचिया बटिंडा पंजाब से, परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप सीमू एकम, दमन और अभिज्योत। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं आनंद फिल्म से।

0: श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है और कुछ नाम मैं और भी लेना चाहूँगी। ये श्रोता हैं हमारे बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजिंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव, सायना और निवांश शर्मा। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई राजकुमार बडोना। और आदरणल गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। ये हमारे श्रोता है हिंगनी आलोर जिला रतलाम एमपी मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
1: भोले भाले

0: श्रोता अभी जगजीत सिंह की गायी कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे हैं।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और आज इस कार्यक्रम का विषय है वर्मी कंपोस्ट एक उद्योग।
1: और ज़्यादा लाभ कमाने खातर खेती में रासायनिक उर्वरक और खरपतवार नाशी हार्मोन्स को ज़्यादा उपयोग करनू माटी और मानव स्वास्थ्य में क्या लगातार गिरावट आने लग रही है, और साथ ही साथ क्या है पर्यावरण को नुकसान होने लग रही है। रासायनिक खेतियों किसान भाइयों की लागत भी बढ़ने लग रही है, और बन आपकी मेहनत को पूरा लाभ कौन मिलने लग रहे हो। इन खातर जैविक खेती अपनाना या अपने करें एकमात्र विकल्प है, जगह में क्या है जैविक खादों को ज़्यादा उपयोग करके माटी की उत्पादकता और उर्वरकता टिकाऊपन जो है वो बने रहे और माटी को जैविक स्तर भी बढ़े। जगहों के है लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए, और रासायनिक खादा के मुकाबले जैविक खादा सस्ती और बनाने में बहुत ही आसान हुए, और इन उपयोगों माटी में ह्यूमस की वृद्धि हुए। जैविक खादा पौधे की वृद्धि खातर किए गए जरूरी खनिज पदार्थ प्रदान करें, जगह माटी में मौजूद सूक्ष्म जीवा द्वारा बूंटे न मिले, जगहों के है उत्पादन अपनों बढ़े और पानी की लागत भी सागे कम हो जाए। पौध वृद्धि खातर किया गया जरूरी आवश्यक तत्व जिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और काफ़ी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जगी है। बा किसान भाइयों जैविक खादा का प्रयोग ही हो जाए। किसान भाइयों जैविक खादा सड़न पर कार्बनिक अमल देवे, जो को किया गया माटी में अघुलनशील तत्व ने घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देवे, जो किया गया माटी को पीएच मान जो है वो संतुलित रहे। यूँ किया गया सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाए, जो किया गया फसल का उत्पादन ज़्यादा हुए और जैविक खादा का प्रयोग हूँ पोषक तत्व पौधे ने लंबे टाइम तक मिलता रहे है। और यह खादा आपको अवशिष्ट गुण माटी में छोड़े, और इन खातर एक फसल में खाद का प्रयोग हूँ दूसरी फसल ने किया लाभ मिले, और सागे सागे माटी उर्वरकता को संतुलन भी बने रहे है। और आगे प्रयोग हूँ बीजा का अंकुरण सही और जड़ा का विकास अच्छो है, और जैविक खादा उपचारित अन्न जगह हुए, और सागे सागे सब्जी फल आदि को स्वाद जो है वो रासायनिक खादा के तुलना में प्राकृतिक रूप उत्तम हुए, और पौधा में जैविक खादा का प्रयोग रोगों लड़ने की जगह शक्ति है वह ज़्यादा हो जाए, और जैविक खादा पर्यावरण की मित्र भी हुए, और इनका क्या है ज़्यादा उपयोग की प्रकार की हानि भी को नहीं हुए। और साथ ही साथ किसान भाइयों कंपोस्ट खाद का उपयोग रासायनिक उर्वरक का नकारात्मक प्रभाव ने भी आप कम कर सका, और इनका उपयोग माटी की उर्वरकता और उत्पादकता में साथ ही साथ वृद्धि तो हो ही हुए, और जगह मूल्यांकन किया आप माटी का भौतिक रासायनिक और जैविक गुणा में होने वाला परिवर्तन द्वारा आप आसानियों समझ का। बात करें किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट की, तो माटी की उर्वरकता और उत्पादकता ने लंबे टाइम तक बनाए रखने खातर जैविक खादा जिया गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु खाद आदि को योगदान बहुत ही जरूरी हुआ है। और अपने देश में करोड़ों टन खेती का अवशिष्ट जिया की भूसो है, कड़व है, पत्तियां आदि उपलब्ध हुआ है, पर इन ज़्यादातर मात्रा में किसान भाई अवशिष्ट जैविक पदार्थ ने किया बाढ़ देवे, जबकि अवशिष्ट जैविक पदार्थ ने कैंसुआ जगह है वह उत्तम किस्म की खाद कि ना बर्मी कंपोस्ट का भी वहाँ परिवर्तित कर देवे, जगह किया गया करोड़ों टन पोषक तत्व अपना प्राप्त हो सके, और कैंचुआ द्वारा खेती अवशिष्ट को रूपांतरण जो है वो बर्मी कल्चर के रूप में जाने जावे। और आपने विश्व में कैंचुआ की लगभग 7,000 प्रजातियाँ पाई जावे, जगह में केवल 40% प्रजातियां ही भारत में पाई जावे। इनमें कई प्रजातियां वर्मी कल्चर खातर किए गए प्रयुक्त करी जावे, जिया की एपीजी कैंचुआ प्रजाति जी है वह अपने देश में सारू उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट के पोषक तत्वों और गोबर की खाद या जगह पोषक तत्वों की अगर तुलनात्मक बात करें तो नत्रजन जगह है वह वर्मी कंपोस्ट में 2-3%, गोबर की खाद में 0.5-0.93%, फास्फोरस की बात करें तो बर्मी कंपोस्ट में 1.5-2%, गोबर की खाद में 0.4-0.8%, पोटेशियम की बात करें तो बर्मी कंपोस्ट में 1.5-2%, गोबर की खाद में 0.8-1.2%, और पीएच मान की बात करें तो बर्मी कंपोस्ट में 7-7.5 और गोबर की खाद में 7.2-7.9 पीएच मान जो है बोरे हुए। अब बर्मी कंपोस्ट का लाभ की बात करें तो गोबर की खाद की तुलना में बर्मी कंपोस्ट में एंटीनोमाइसिटीज यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा कई गुना ज्यादा हुआ है, जबकि वही खाद तैयार फसलों में बीमारियों का प्रतिरोधी क्षमता जगह वह बढ़ जावे, और बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग माटी की जल शोषण धारण क्षमता में वृद्धि हुआ है, जबकि क्या माटी को कटाव रुके और पौधे में क्या है जल उपलब्धता पर वृद्धि हुए। इन खाद का उपयोग जल वाष्पीकरण में कमी हुए, और इन खातर फसलों में कम सिंचाई की जरूरत पड़े, और सागे ही सागे खेता में

0: ह्यूमस वृद्धि के कारण बरसात की बूंदा को आघात सहन की क्षमता साधारण माटी की तुलना में कई गुना हो जावे और माटी को क्षरण भी कम हुए। बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बूंटे में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हुए और सागे सागे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़े, जबकि माटी में रहने वाला सूक्ष्म जीवाणुओं खातर लाभदायक हुए और बने सक्रिय बनावे। बर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट तैयार करने खातर छायेदार स्थान की अपने जरूरत पड़ेगी, जटे पानी को भराव नहीं होना चाहिए और शेड होना चाहिए और पानी का स्रोत जगह है वह नेड़े ही हुए, जखों के अपन पानी देने में आसानी रहे। छायेदार जगह को आकार उपलब्ध कार्बनिक ठोस अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करे और इन छायेदार स्थान में एक ऊँ ज़्यादा क्यारियाँ आप बना सका। गोबर की खाद की उपलब्धता अनुसार क्यारियाँ आप निश्चित करनी चाहिए। आंगी लंबाई अवशिष्ट की मात्रा अनुसार अपन रखनी चाहिए, चौड़ाई लगभग 3 फीट निश्चित किया गया अवशिष्ट पलटन में किएगा अपन असुविधा रहेगी। सारों पहला क्यारी में नीम की पत्तियाँ की एक पतली परत अपन बिछा देनी चाहिए और इन पर 4-5 दिन तक ठंडो करेड़ो गोबर अपन रेड़ देना चाहिए और थोड़ा पानी डाल के अपन नम कर लिया और इन परत में 1 इंच मोटी वर्मी कल्चर की परत जगह में केंचुआ मिलेड़ा हुआ है वह अपन बिछा देना है। केंचुआ नमी पाते ही नीचे कानी चले जावे और क्यारी ने ढक्कन खातर किया है ऊपरों घास फूस सूखी पत्तियां अपन बिछा देनी चाहिए और अब आना किया कि बोरी में अच्छी तरह ढक देना चाहिए और पानी को छिड़काव करके इन्हें गीला अपना करता रहना चाहिए और लगभग 2 महीना का मामा गोबर केंचुआ द्वारा वर्मी कंपोस्ट में बदल जावे और केंचुआ जो है वह कार्बनिक पदार्थ ने खाता रहे और आपकी जिसकी कास्टिंग है वह ढेर के ऊपर के छोड़ता जावे। अब इन्हें प्रयोग करने की विधि की बात करें तो माटी में नमी उपलब्ध होने की अवस्था में प्रति हेक्टेयर 2.5 लेके 3 टन बर्मी कंपोस्ट खेत में डाल के अपन बुआई कर देनी चाहिए। सब्जियां खातर के प्रति हेक्टेयर 5 टन बर्मी कंपोस्ट खेत में रेड़ के बीज की बुआई अपन करनी चाहिए। औषधीय पौधे में प्रति हेक्टेयर 5 टन बर्मी कंपोस्ट डाल के अपन रोपाई करनी चाहिए और फूलों का बगीचा में 3-5 किलो प्रति पौधे थावड़े में डाल के अपन गुड़ाई करनी चाहिए और गृह वाटिका में 5 किलो प्रति वर्ग मीटर डाल के अपने बुआई कर देनी चाहिए। बात करें किसान भाइयों बर्मी कंपोस्ट उद्योग लाभकारी किए हैं तो वो व्यवसाय जो है वो किसान भाई किसी भी छायेदार स्थान शुरू कर सके। इन व्यवसाय में जो कि खेती करने वाली महिला है वह घर के कार्य सागे इन आसानियों कर सके और इनमें खेती अवशिष्टों को बेहतर उपयोग हो जाए और बर्मी कंपोस्ट के सागे केंचुआ ने बेचन को कार्य आसानियों कर सके और कम लागत में ज़्यादा मुनाफो भी अपना किसान भाई प्राप्त कर सके। बर्मी कंपोस्ट ब्रांड की तकनीक आसान होने के कारण सीखने में भी किए गए टाइम को लगे और इन साथ साथ किए गए अपने एक दो बातों को भी ध्यान रखना है तो क्यारियाँ किए गए सीधी धूप और बारिश को अपन बचानी है तो केंचुआ अपना मर जाएगा। गर्मी में 2 बार और बरसात में जरूरी होने पर पानी को अपन छिड़काव करता रहना है और खाद निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बार बार उथल पुथल अपन नहीं करनी है और यूँ किए गए केंचुआ नष्ट होने को खतरा रहेगा। खाद प्रक्रिया के पूर्व होने के टाइम केंचुओं की संख्या और देखभाल पर निर्भर करें और केंचुओं द्वारा गोबर की खाद में परिवर्तन तुरंत होने के बाद ठंडे गोबर की क्यारी तैयार अपन रखनी चाहिए और बिग मत अपन छोड़ देना चाहिए ताकि भूखों केंचुआ मर ना जावे। और आ बातों के हिसाब आप कैसे कहा कि आधुनिक युग में जटे किसी भी उद्योग ने चलाने खातर कठिनाइयों का सामना करना पड़े बट आज खेती के क्षेत्र में बर्मी कंपोस्ट लघु उद्योग ने कह किसान भाइयों ने नई दिशा प्रदान करी है और कम खर्च में ज़्यादा मुनाफो माटी की उर्वरता शक्ति ने बनाए रखने खातर बर्मी कंपोस्ट लघु उद्योग को महत्वपूर्ण योगदान है और इन लघु उद्योग ने शुरू करके किसान भाई और किसान महिला खुद और देश के आर्थिक स्तर ने ऊंचो उठाने में मदद कर सके। तो किसान भाइयों आज को टाइम ही तो ही देव आ गया। राम राम सा राम राम।
1: श्रोता अभी खेत खलिहान कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100

कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को किरण का नमस्कार। सखियों, आज की दुनिया तेज रफ्तार, तनाव और अनिश्चितताओं से भरी है। आपसी द्वेष, तनाव और भीतर पसरा मानसिक बोझ, इन सब के बीच अगर कोई साधन सहज, सुलभ और शक्ति संपन्न है तो वो है मुस्कान। सखियों, मुस्कुराना केवल चेहरे की क्रिया नहीं, आत्मा का योग है। वह योग की ही तरह हमें वर्तमान क्षण से जोड़ता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो न केवल अपनी श्वास, मुद्रा और शरीर से जुड़ते हैं, बल्कि अपनी चेतना की गहराइयों को भी छूते हैं। एक सच्ची और सहज मुस्कान, भले ही वह क्षणिक हो, भीतर की शांति को बाहर प्रकट करती है। सखियों, योगाभ्यास के दौरान जब हम चुनौतीपूर्ण मुद्राओं में होते हैं तो एक हल्की मुस्कान यह याद दिलाती है कि जीवन संघर्ष नहीं, समर्पण है। मुस्कान हमारी अभ्यास में करुणा, विनम्रता और धैर्य का स्पर्श जोड़ देती है। यह हमें शरीर के साथ सोच में भी लचीला बनाती है। वर्तमान समय में जब दुनिया तनाव और द्वेष से जूझ रही है, ऐसे में मुस्कुराना एक आध्यात्मिक प्रतिरोध जैसा हो सकता है। यह अहिंसा की मौन भाषा है। सख्य शोध के अनुसार नियमित रूप से मुस्कुराने से तनाव के हार्मोन कम होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होती है और जीवन की अनेक बीमारियों से बचाव संभव होता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है, दिमाग शांत और संतुलित रहता है। इसीलिए सखियों, जितना हो सके हंसते मुस्कुराते रहिए। लीजिए सखियों, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, मुस्कान सूरज की किरण की तरह होती है। यह जिस भी चीज़ को छूती है उसे रोशन कर देती है और तनाव के काले बादलों को चीर देती है। सखियों, हमारे जीवन के साथ कोई एक चीज़ निश्चित रूप से जुड़ी हुई है तो वह है तनाव। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, काल्पनिक हो या वास्तविक, खुद से पैदा किया हो या दूसरों द्वारा दिया गया, तनाव एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ तब से है जब से हमने इसके अस्तित्व को जाना है। लेकिन तनाव से दूर भागने का एकमात्र हथियार है मुस्कान। सखियों, मुस्कान में एक जादुई शक्ति होती है। ऐसा दावा किया जाता है कि मुस्कुराना कई तरह से फायदेमंद है। यह तनाव कम करता है, रक्तचाप को कम कर सकता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। कहा जाता है कि एक साधारण सी मुस्कान, चाहे वह सच्ची हो या बनावटी, तनाव को कम करती ही है, जिससे सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है और मन और दिमाग शांत रहता है। सखियों, सुनते हैं एक और ये अगला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, बच्चों की छुट्टियां चल रही है। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ समय नहीं, एहसास होनी चाहिए, जहां भागदौड़ नहीं सुकून हो, स्क्रीन नहीं खेल हो, और हर दिन में बचपन के रंग खुलते हो। जब पहले गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो यह सोचकर खुशी चेहरे पर आ जाती थी कि अब छुट्टियां हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपनी धुन और मौज मस्ती में कॉमिक्स पढ़ना या पिट्ठू, छुपन छुपाई, कंचे और न जाने कितने ऐसे खेल जिन्हें खेलकर हम में बहुत से लोग बड़े हुए हैं। ये छुट्टियां आज भी हैं, लेकिन उनका रूप थोड़ा बदल गया है। बच्चे अब अवकाश में नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए अनुभव ले रहे हैं, परंतु जो सुकून और बेफिक्री है वह भी तो जरूरी है, जिसका ख्याल अभिभावकों को रखना चाहिए। सखियों, हम अभिभावक आज भी अपने समय की गर्मियों की छुट्टियों और उनमें बिताए गए एक एक पल को याद करते हैं। खुशी के उन पलों को याद कीजिए और देखिए कि क्या वही रंग हमारे बच्चों की छुट्टियों में भी शामिल है। लीजिए सखियों, सुनते हैं एक और गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, गर्मी की छुट्टियों में दादी नानी मामा बुआ के घर जाना एक परंपरा हुआ करती थी, जिसमें एक अद्भुत उत्साह होता था। वहाँ पहुँचते ही बच्चों को अपनेपन, प्यार और खुलकर जीने का एहसास मिलता था। दिन भर खेलना, कहानियाँ सुनना, छत पर सोना, पेड़ों पर चढ़ना, घर के बने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना और बिना किसी बंधन के समय बिताना, ये सब छुट्टियों को खास बना देता था। पहले के समय में गर्मियों की छुट्टियों में खाली समय का भंडार होता था। हम बिना किसी तय कार्यक्रम के पूरे दिन अपनी मर्जी से खेलते, नए नए खेल ईजाद करते और हर पल को अपनी तरह से जीते थे। यही खाली समय कल्पना शक्ति को पंख

देता था। छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें अपार खुशी मिलती थी। सखियों, मनोरंजन के साधन भले ही सीमित होते थे पर आनंद भरपूर होता था। दोस्तों के साथ सतोलिया, लट्टू, लुक्का छुपी जैसे पारंपरिक खेल खेलते, कहानियाँ सुनते सुनाते और छोटी छोटी गतिविधियों में भी खूब खुशी ढूंढ लेते थे। यही सादगी भरा मनोरंजन छुट्टियों को यादगार बना देता था। लीजिए सुनिए एक और गीत।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सखियों, बचत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बचत का अर्थ है अपनी नियमित आय से एक निश्चित राशि अलग रखना, मुख्य रूप से भविष्य के खर्चों, निवेशों या आपात स्थिति के लिए, क्योंकि यह हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम निश्चित रूप से बचत करते हैं तो हम आपात स्थिति में आर्थिक संकट से बच सकते हैं। इसके अलावा बचत से हम शिक्षा, विवाह या घर माल आदि बड़े खर्चे भी कर सकते हैं। सखियों, बचत को अपनी आदत बनाना चाहिए। इससे न केवल वर्तमान में आर्थिक स्थिरता होती है बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार होता है। बचत के माध्यम से हम अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सखियों, जब हमारे पास बचत की राशि होती है तो हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दैनिक खर्चों के अलावा भी बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जिनके लिए बचत बहुत ही ज़रूरी है और समय आने पर हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। जैसे बच्चों की शिक्षा पर अच्छा खासा पैसा लगता है, शादी के समय या फिर बीमारियों पर पैसा लगता है, या कई बार सखियों जीवन में कुछ ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता। इन सब के लिए बचत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सखियों, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करके बचत के माध्यम से हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लीजिए सुनिए एक और गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सखियो, इस भीषण गर्मी से तो हम सभी वाकिफ हैं। इस गर्मी से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी न होने दें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सीधी धूप में निकलने से बचना ही सही है। गर्मी में हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए और घर से बाहर निकलते समय सिर व आँखों को हमेशा ढक कर ही रखना ठीक है, क्योंकि गर्मी में जो हीट वेव चलती है इससे बचाव बेहद ज़रूरी है। सखियो, इस गर्मी में पानी तो खूब पिए, चाहे प्यास हो या ना हो, फिर भी दिन में 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। और हाँ, सादा पानी पीने के बजाय नींबू पानी, शिकंजी, छाछ, नारियल पानी या ORS का सेवन करें तो और भी अच्छा है। सखियो, लू से बचने के लिए अपने आहार में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और मौसमी, इन फलों में पानी की मात्रा होती है। ये रसदार फल गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सखियो, गर्मियों में ज़्यादा प्रोटीन, मसालेदार और तेलीय भोजन करने से बचें और बासी खाना भी न खाएं। ताज़ा फल और ताज़ा

सखियों, बेसन जिसे ग्राम फ्लोर या चिकपी फ्लोर भी कहा जाता है, हमारी रसोई में सबसे आम सामग्रियों में से एक है। बेसन मूल रूप से तो चने की दाल से बना आटा होता है। भारतीय व्यंजनों में बेसन का उपयोग अक्सर विभिन्न प्रकार के पकौड़े बनाने में किया जाता है, लेकिन पकौड़ों के अलावा कुछ ऐसी रेसिपी भी है जिनसे बेसन को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बेसन से बने स्नैक्स, नाश्ता, साइड डिश और मिठाइयाँ भी शामिल हैं। बेसन से बनने वाली सामग्री जैसे कि बेसन का चीला, बेसन मसालों और जड़ी बूटियों से बना नमकीन पैनकेक, इसे और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसमें कद्दूकस की हुई सब्जियां भी हम मिला सकते हैं। यह न केवल सेहतमंद बल्कि बनाने में झटपट और आसान है। फिर है मेथी थेपला रेसिपी। ये ताजी मेथी के पत्तों, गेहूं के आटे और बेसन से बनी फ्लैट ब्रेड है जिन्हें दिन में कभी भी खाया जा सकता है। मेथी थेपला को सादे दही, नींबू के अचार या आम के अचार के साथ भी हम खा सकते हैं। ब्रेड पकौड़ा। मसालेदार मसले हुए आलू से भरा हुआ ब्रेड पकौड़ा एक लोकप्रिय नाश्ता है। इसके कई प्रकार हैं जैसे कि ब्रेड रोल, पनीर ब्रेड रोल, चीज ब्रेड रोल। सखियों, बेसन से बनी हुई सब्जियों में कढ़ी है, गट्टे की सब्जी, बेसन के भुजिया, बेसन शिमला मिर्च, भरवा मिर्च, ये सभी बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन हैं। इनके अलावा बेसन से बनी मिठाइयाँ जैसे कि बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी और सखियों इसके अलावा बेसन के स्नैक्स भी बनाए जाते हैं जैसे कि पालक पकौड़ा, पनीर टिक्का, मिर्ची बड़ा, पनीर टोस्ट, पनीर सैंडविच, प्याज पकौड़े। बेसन के पकौड़े तो अनेकों प्रकार के बनते हैं, ये क्रंची और स्वादिष्ट भी होते हैं। सखियों, आप सुन लेते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: श्रोता अभी महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia. Says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade.

0: की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस टेक्नोलॉजिकल एडवांस

0: And complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers, and ethical leaders.
1: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया. ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है.
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का. तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है.
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया. रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए. बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा. केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है. इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे. डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है. एक रिपोर्ट.
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई. जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे. इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए. समाचार कक्ष से मेघना शर्मा.
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए. नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है. लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है. अप्रैल में ये 3.48% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही. भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ. विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई. वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते

0: पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। बैनी दयाल और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाजों में ये गीत आप अब सुनेंगे गजनी फिल्म से। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत AR रहमान का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है और श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से। आवाज़ें अमिता भट्टाचार्य और अनुषा मणि की है। गीत के बोल अमिता भट्टाचार्य ने लिखे हैं और संगीत विशाल शेखर का है।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। जी हाँ, इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाज़ों में। शब्द रचना कुमार की है और संगीत शरीफ तोशी और जावेद अहमद का है। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

आतिफ असलम की आवाज़ में रेस फिल्म से अब ये गीत सुना आपने। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत प्रीतम का था। लीजिए फिल्म संगीत का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं, हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। आवाज़ें कविता और हरिहरन की है। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत इस्माइल दरबार का है।

0: श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवीत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस में एवियो में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर क्यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। और भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्ट्रेटेजिक विजन में फ्रांस का खास मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के दरमियान

शोला और शबनम फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था खय्याम ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डे की आवाज में सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है रवि ने।

एक साल फिल्म का नाम आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया था रवि ने। और समझने इसके प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सलील चौधरी की मौसीकी सजा, ये नगमा फिल्म है काबली वाला।

और शमी जब सुनी सईद कादरी का लिखा है गीत जिसे मौसीकी सजाया प्रीतम ने, आवाज गैलन जॉन की है, फिल्म है वो लम्हे।

और शामिल लीजिए, जब सुनिए जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज़ों में नासिर फराज का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है राजेश रोशन ने, फिल्म है काबिल।

आप सुन रहे थे आशिकी टू फिल्म का नगमा अंकित तिवारी की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा को सुनिए। फिल्म है ट्रैफिक सिग्नल, मौसीकार संदेश संदीलिया शंदालिया।

0: शारदा सिन्हा की आवाज़ में आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का नगमा, नगमा निगार थे सत भोपाली, मौसीकार राम लक्ष्मण। और अब सुनिए शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ों में पतंगा फिल्म का ये नगमा।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

भारत की फौज ने आज अपने 481 नए अफसरों का खैर मकदम किया, जिन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में वाकई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी तरबियत पूरी की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 158वें पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इन अफसरों ने अपनी सख्त मेहनत और जाँफिशानी के साथ फौजी तरबियत कामयाबी के साथ पूरी की है। इन अफसरों ने फौजी जज्बे, लगन और डिसिप्लिन की मिसाल पेश करते हुए परेड में हिस्सा लिया। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी नौयत की परेड थी, क्योंकि इसमें पहली बार मर्द कैडेटों के साथ साथ खवातीन कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। इस शानदार तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि वो 9 खातून कैडेट्स को देख कर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि यह न सिर्फ भारत की दिफाई अफवाज की तारीख में एक अहम संग मील है, बल्कि ख्वातीन की ज़ेर क़यादत भारत की तरक्की के सफ़र में एक बाईस फैज़ान मिसाल भी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फ़ज़ाइया में नए भर्ती होने वाले अफसरों पर जोर दिया है कि वो बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में सेटेलाइट और ड्रोन समेत नित नए उभरने वाले जंगी टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करें। उन्होंने ये बात हैदराबाद में डंडीगल में फिजाइया की एकेडमी में 217वें मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड में शामिल अफसरों से खिताब करते हुए कही। जनाब राजनाथ सिंह ने अफसरों पर जोर दिया कि जदीद जंगी तौर तरीकों और हरबों में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं और अफसरों को उभरते हुए नए जंगी तौर तरीकों और निज़ाम से खुद को वाबस्ता रखना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने आज मगरबी बंगाल में म्यूनसिपैलिटी में तकरीरी से मुतालिक मुबैना धांधली के ताल्लुक से कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। मजकूर कार्रवाई TMC MLA और साबिक वजीर मदन मित्रा से मुंसलिक मकामात पर की जा रही है। ईडी के मुताबिक अब तक की गई तहकीकात से ये इंकशाफ हुआ है कि मदन मित्रा ने कमरहट्टी म्यूनसिपलिटी समेत मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटियों में मुतअद्दिद ओहदों पर नाअहल उम्मीदवारों की तकरीरी के मामले में बिचौलियों के जरिए नकद और सोने के तौर पर रिश्वत ली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है जिसमें 3 भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तजारती बहरी जहाज़ों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। उम्र खारजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लाइकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लाइकी फ्रीडम बहरी जहाज के अहदेदार से बात की है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। MEA के हकायक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वह सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह के झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट के खिलाफ होशियार रहें। इन खबरों के बावजूद कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचने के करीब हैं, ईरान ने कहा है कि वो महीनों से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए उस वक्त तक किसी हतमी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा जब तक कि उसकी अहम शरायत पूरी नहीं की जाती। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे को बताया कि मुफाहमत के मसौदे को कतई शक्ल दी जा चुकी है और आइंदा दिनों में उस पर डिजिटली दस्तखत किए जा सकते हैं। अलबत्ते ईरान के हुकाम का कहना है कि तेहरान मुस्तकिल समझौते की उस वक्त तक तौसीक नहीं करेगा जब तक कि अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर देता और ईरान के अरबों डॉलर के मुंजमिद असासों को जारी नहीं करता। फिनलैंड की वजीर खारजा एलिना वाल्टोनेन ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने की हमायत की है और यह भी कहा है कि भारत मगरबी मुल्कों की तेल की कीमतों से मुतालिक जाब्तों पर अमल करता रहा है। फिनलैंड में एक मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने ये बात कही। मीटिंग में भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। फिनलैंड की वजीर खारजा एलिना ने कहा कि तेल की कीमतों पर एक हद इसलिए

0: लगाई गई थी कि रूस के मुनाफे को महदूद करने के साथ साथ तेल की फरामी भी जारी रहे, और भारत ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़कर 689 होने की तस्दीक हुई है, जिनमें 139 अमवात भी शामिल हैं। सेहत से वाबस्ता अहलकारों के मुताबिक इतुरी सूबे से 17 नए केसों और मजीद 5 अमवात की तस्दीक हुई है। हुकाम ने दवाओं की फराहमी में किल्लत, इलाज मुआलजे की महदूद सहूलियात और 2 करोड़ 15 लाख डॉलर की रकम की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। आज सुबह आसाम में फिजाइया के जोरहाट स्टेशन पर भारतीय फिजाइया का एक AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फिजाइया ने बताया कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए कुछ छानबीन की जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम मोदी फ्रांस में इवियान में ग्रुप सात की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। भारत ने खलीजी खत्ते में एक तेल बर्दार जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है, और भारत की फिजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फिजाइया के जोहार स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुने, युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत और साथ ही दोस्तों हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा और साथ ही सुनाएंगे आपकी फरमाइशों पर आपको पुनः नाटक आखिरी चिट्ठी। तो लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, आज की बात में हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ की साथ ही पुस्तकें इस टॉपिक पर। दोस्तों, पुस्तकें वास्तव में हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, अच्छी साथी होती है, बशर्ते हम उन्हें अपना अच्छा साथी बनाए रखें। तो विद्यार्थी जीवन में पुस्तकें केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं होती दोस्तों, बल्कि वे व्यक्तिगत निर्माण, ज्ञान वृद्धि और जीवन दर्शन का आधार भी बनती है। तो आइए आज के इस युवाणी कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे पुस्तकों के महत्व के बारे में। विद्यार्थी जीवन सीखने और सिखाने का काल होता है। इसी समय में व्यक्ति के विचार, आदतें और व्यक्तित्व आकार लेते हैं। जब कोई विद्यार्थी अकेला होता है तो दोस्तों बुक्स उसका मार्गदर्शन करती है। जब वह निराश होता है तो पुस्तक उसे प्रेरणा देती है, और जब वह किसी समस्या में उलझता है तो पुस्तक उसे समाधान का रास्ता दिखाती है। अच्छी पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक होता है। श्रोता, बुक्स केवल शब्दों का संग्रह नहीं, वे अनुभवों का खजाना है। उसमें महान व्यक्तियों के संघर्ष, सफलता और जीवन के अनमोल संदेश छिपे होते हैं। एक विद्यार्थी यदि प्रतिदिन थोड़ी देर भी अच्छी पुस्तकें पढ़े तो उसका ज्ञान, भाषा, सोच और आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता रहता है। अंधेरे में दीपक बनकर देती नई उड़ान, विद्यार्थी के जीवन में भर देती पहचान। मित्र न कोई, इनके जैसा न कोई उपकार, पुस्तकें है सच्चे साथी।

जीवन का श्रृंगार। तो लीजिए दोस्तों, इसी विषय को हम जानेंगे एक छोटी सी प्रेरक कहानी के माध्यम से। एक गांव में राहुल नाम का विद्यार्थी रहता था। वह पढ़ाई में साधारण सा था। उसके माता पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। दोस्तों, राहुल अक्सर सोचता था कि बड़े शहरों के बच्चों के पास तो अच्छी सुविधाएं हैं, इसीलिए वे जल्दी सफल हो जाते हैं। लेकिन एक दिन उसके विद्यालय के शिक्षक ने उसे गांव के छोटे से पुस्तकालय की सदस्यता लेने की सलाह दी। और फिर क्या था दोस्तों, राहुल ने पुस्तकालय जाना शुरू किया और शुरुआत में उसने कहानियां पढ़ी, फिर उसने विज्ञान, इतिहास, जीवनी और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़नी शुरू कर दी। दोस्तों, धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा, उसकी भाषा सुधरी, उसकी सोच विकसित हुई और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। तो एक दिन उसने अपने शिक्षक से पूछा। राहुल ने कहा, गुरुजी, क्या सचमुच पुस्तकें इंसान का जीवन बदल सकती है? तो उसके टीचर ने कहा, बेटा, पुस्तकें रास्ता दिखाती है, चलना तुम्हें पड़ता है, लेकिन सही दिशा वही बताती है। और दोस्तों, राहुल ने फिर भी पढ़ना जारी रखा। कुछ वर्षों बाद वही राहुल प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर अधिकारी बन गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, यदि पुस्तकों का साथ मिल जाए तो सफलता का मार्ग आसान हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनमें से अधिकांशों को पुस्तकों से भी काफी प्रेम था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सीखना रचनात्मकता देता है, रचनात्मकता सोच देती है, सोच ज्ञान देती है और ज्ञान आपको महान बनाता है। उनके जीवन में पुस्तकों का काफी विशेष स्थान था। भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि वे कहाँ रहना पसंद करेंगी, तो दोस्तों उन्होंने उत्तर दिया, वहां जहां पुस्तकालय सबसे निकट हो। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को निरंतर अध्ययन करने की हमेशा प्रेरणा दी थी। श्रोताओं, आज का युग माने तो डिजिटल का युग है, यानी डिजिटल, सोशल मीडिया, एआई का, काफ़ी टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है जिनके माध्यम से हम इजीली कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कहाँ भी जाके जानकारी प्राप्त करना पहले की अपेक्षा काफ़ी इजी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ। मोबाइल हमें दोस्तों सूचना दे सकता है, लेकिन ज्ञान तो हमें पुस्तकें ही देती है, क्योंकि जो एक ऑथर होता है, राइटर होता है, वो इधर उधर की जो अपने आसपास की घटनाएं होती है उनको अपने शब्दों के माध्यम से बुक्स के पेजेस में उकेरता है। मोबाइल हमारा ध्यान भटका सकता है, लेकिन दोस्तों पुस्तकें ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। इंटरनेट पर जानकारी बिखरी हुई मिलती है, जबकि पुस्तकें व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करती है। दोस्तों, विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करना चाहिए, लेकिन पुस्तकों से भी दूरी नहीं बनानी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में बुक्स का क्या महत्व है। दोस्तों, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से भाषा का विकास होता है, हमारी वर्ड पावर बढ़ती है, सोचने की क्षमता विकसित होती है, नैतिक मूल्यों की समझ आती है और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। किताबों की खुशबू में सपनों का संसार, हर पन्ना देता हमको जीवन का उपहार, गिरकर फिर उठना सिखलाए हिम्मत का संचार, विद्यार्थी के पथ की ये सबसे बड़ी पतवार, जो इनके संग चलता है पाता नहीं उड़ान, पुस्तकें बन जाती है फिर जीवन की पहचान। तो लीजिए, हमने बात की पुस्तकों के बारे में, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, अब से कुछ ही मिनट बाद आप सुनेंगे एक नाटक आखिरी चिट्ठी, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पुनः प्रस्तुति में। निर्देशन नवीन सिसोदिया, लेखक डॉक्टर विशाल छाबड़ा, सूत्रधार राजेश चड्ढा, प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, रश्मि छाबड़ा, सुमन कंवर, गुलशन मेघानी, रजनी मोदी, अक्षत चावला, देवेंद्र रोकणा, देव मेघानी और मोहनलाल।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना बाजीगर फिल्म से ये गीत। लीजिए, अब आपको सुनाएंगे एक नाटक, आखिरी चिट्ठी। निर्देशन नवीन सिसोदिया, लेखक डॉक्टर विशाल छाबड़ा, सूत्रधार राजेश चड्डा, प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, रश्मि छाबड़ा, सुमन कंवर, गुलशन मेघानी, रजनी मोदी, अक्षत चावला, देवेंद्र रोकड़ा, देव मेघानी और मोहनलाल।

कहते हैं एक सैनिक केवल सीमा पर नहीं लड़ता, वो हर दिन अपने परिवार की भावनाओं से भी लड़ता है। एक तरफ मातृभूमि का कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने घर परिवार का प्रेम। ये कहानी है कैप्टन अर्जुन की, जिसने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा सैनिक मरता नहीं, अमर

0: बेटा, इस बार तुझे जाने देने के लिए मन ही नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों दिल बार बार घबरा सा रहा है।
1: मां, आपने ही तो बचपन से सिखाया है देश सबसे ऊपर होता है, और अगर आज मैं पीछे हट गया तो उस शिक्षा का क्या होगा जो आज तक आप हमें देती आई हैं।
0: मैं जानती हूं बेटा, लेकिन माँ का दिल भी तो आखिर माँ का ही होता है ना। जब खबरों में सीमा पर गोलीबारी सुनती हूँ तो रात रात भर नींद नहीं आती मुझे।
1: जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मां, मुझे कुछ नहीं होगा। आप क्यों चिंता करते हो?
2: आप हर बार इतना सहज होकर चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाता है, कभी महसूस किया है आपने?
1: रश्मि, सैनिक का घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, पूरा देश उसका घर होता है।
2: लेकिन उस पूरे देश में आपका अपना परिवार भी तो है।
1: और उसी परिवार की सुरक्षा के लिए तो मैं सीमा पर खड़ा हूं।
3: पापा, इस बार मेरे जन्मदिन पर जरूर आना, पिछले साल भी आप नहीं आए थे।
1: इस बार मैं जरूर आऊंगा मेरे बेटे, जरूर आऊंगा, और तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा।
3: क्या?
1: अपने पापा का प्यार, और क्या।

0: क्या सोच रही हो रश्मि?
1: कुछ नहीं, बस कभी कभी बड़ा डर लगता है अर्जुन। सच बताओ, क्या आपको कभी डर नहीं लगता?
0: डर हर इंसान को लगता है रश्मि। जो कहे कि उसे डर नहीं लगता वो झूठ बोलता है। लेकिन लेकिन फर्क इतना है कि एक सैनिक अपने डर से बड़ा अपना फर्ज मानता है रश्मि।
1: अगर कभी आपको कुछ हो गया
0: तो आंसू मत बहाना रश्मि। गर्व करना कि तुम्हारा पति उस मिट्टी के काम आया जिसने हमें जन्म दिया है।
1: बड़ी बड़ी बातें करना आसान है अर्जुन, लेकिन आपके बिना जीना शायद मेरे बस में नहीं होगा।
0: तुम्हें जीना होगा रश्मि, चिंटू के लिए, मां के लिए और उस वर्दी के सम्मान के लिए जिसे मैं पहनता हूं।
2: कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1।
3: अर्जुन जल्दी लौट आना बेटा।
0: हाँ माँ, अभी तो मुझे चिंटू को बड़ा आदमी बनते देखना है। माँ
4: पापा आप सबसे बहादुर हो ना?
0: नहीं बेटा, सबसे बहादुर तो वो होते हैं जो सैनिक का इंतजार करते हैं। क्यों रश्मि, सही कह रहा हूँ ना मैं?
1: फोन करते रहिएगा।
0: अरे इतनी चिंता मत किया करो, माँ और चिंटू का ख्याल रखना, और हाँ अपना भी।

0: यार अर्जुन, कभी कभी सोचता हूं क्या हमारी जिंदगी सिर्फ युद्ध के लिए बनी है।
1: अरे नहीं रवि, युद्ध तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है मेरे भाई। हम लड़ते इसलिए हैं ताकि देश के लोग चैन से रह सकें।
0: तुम्हें घर की याद नहीं आती?
1: हर पल आती रवि, माँ की आवाज, रश्मि की बातें और चिंटू की शरारतें, सब याद आता है। लेकिन जब तिरंगा आंखों के सामने लहराता है ना, तो सारी कमजोरियां ताकत बन जाती है मेरे भाई।

0: सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, दुश्मन ने पहाड़ी वाले मोर्चे पर भारी हमला कर दिया है। याद रखो, आज सिर्फ सीमा की नहीं देश की अस्मिता की रक्षा का सवाल है। एक भी दुश्मन, याद रहे, एक भी दुश्मन इस चौकी को पार नहीं करना चाहिए, समझे?
1: यस सर।
2: अर्जुन, सामने वाली पहाड़ी पर दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा।
3: संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते रवि, हौसले से जीते जाते हैं। जब तक इस शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, कोई दुश्मन इस धरती की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। उन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना है। भारत।

0: अर्जुन संभल कर।
1: अर्जुन अर्जुन तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें गोली लगी है भाई।
2: ये गोली मेरे लिए गर्व है कैप्टन।
1: अर्जुन
2: एक सैनिक के शरीर पर लगी गोली
1: अर्जुन नहीं,
2: कमजोरी नहीं उसकी बहादुरी की पहचान होती है।
1: अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं होगा,
2: जब तक सांस चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगा।
1: अर्जुन अर्जुन हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें चिंटू को बड़ा होते देखना है।
2: रवि रवि

0: अगर मैं वापस न लौट पाऊं तो मेरी मेरी ये आखिरी चिट्ठी मेरे बेटे तक जरूर पहुंचे।
1: अर्जुन नहीं,
0: उसे कहना उसका पिता डर कर नहीं लड़कर गया।
1: अर्जुन नहीं।
0: और माँ से कहना उसका बेटा अपनी धरती माँ के काम आ गया है। रवि
1: नहीं अर्जुन, तुम ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो तुम?
0: देश हमेशा सबसे ऊपर होता है।
1: अर्जुन
0: भारत माता की जय।
1: अर्जुन
0: की।

0: माता जी, कैप्टन अर्जुन की चिट्ठी आई है।
1: अर्जुन की चिट्ठी? मेरे अर्जुन की चिट्ठी आई है? पढ़ो बहू, क्या कह गया मेरा बेटा?
2: अगर मैं वापस न लौटूं, तो खुद को अकेला मत समझना। एक सैनिक मरता नहीं, वो तिरंगे में जीवित रहता है। मां का ख्याल रखना, चिंटू को अच्छा इंसान बनाना। बेटा चिंटू, जिंदगी में कभी गलत रास्ता मत चुनना मेरे बेटे। सच्चाई और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। और अगर लोग पूछे कि तुम्हारे पापा कौन थे, तो गर्व से कहना, मेरे पापा भारतीय सेना में थे। और हां, मेरी कभी महसूस हो तो आसमान की तरफ देख लेना। मैं किसी सितारे में मुस्कुराता हुआ मिल जाऊंगा।

0: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है,
0: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है।
2: आज हम सब की आंखें नम हैं, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा भी है। इस मिट्टी ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने अपने प्राणों से भी अधिक अपने देश की आन बान और शान को महत्व दिया।
0: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है।
2: बहन जी, आपने सिर्फ अर्जुन को जन्म नहीं दिया, आपने इस देश को एक सच्चा सपूत दिया है। हर माँ अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहती है, लेकिन आपका बेटा तो अमर हो गया। आने वाली पीढ़ियां भी कैप्टन अर्जुन की वीरता और बलिदान को याद रखेंगी।
0: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है,
0: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है।
2: और इस गांव का प्रधान होने के नाते मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप कैप्टन अर्जुन से प्रेरणा लें। कैप्टन अर्जुन जैसे वीर इस देश की असली पहचान है।
3: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है,
3: कैप्टन अर्जुन
1: अमर है।
4: बहन, मेरे तो कोई औलाद नहीं है, और सच कहूं तो आज तक मुझे इस बात का इतना दुख कभी नहीं हुआ। काश मेरे भी एक बेटा होता तो मैं उसे भी अर्जुन की तरह देश सेवा में अर्पित कर देती।
5: अर्जुन सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो इस मिट्टी का लाल था। बचपन से ही उसकी आंखों में देशभक्ति का जुनून दिखाई देता था। जब उसने पहली बार सेना की वर्दी पहनी थी, उसी दिन मैंने समझ लिया था कि अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं रहा, पूरे देश का हो गया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका साहस, उसका बलिदान और उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर अगला जन्म मिले तो मैं फिर उसी अर्जुन को अपनी कोख

0: से जन्म देना चाहूंगी, उसी अर्जुन को अपनी कोख से जन्म देना चाहूंगी।
1: मैं भी बड़ा होकर अपने पापा जैसा सैनिक बनूंगा। मम्मी, मुझे पापा जैसा सैनिक बनाओगी ना? बोलो ना मम्मी, बनाओगी ना?
2: हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पापा जैसा वीर सैनिक बनाऊंगी। तुम्हें इतना साहसी बनाऊंगी कि देश का तिरंगा देखकर तुम्हारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाए। और एक दिन जब तुम अपने पापा की तरह वर्दी पहनोगे, तब मुझे लगेगा कि अर्जुन

कुछ चिट्ठियां केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होती, वे भावनाओं, त्याग और बलिदान की अमर गाथा बन जाती हैं। कैप्टन अर्जुन की आखिरी चिट्ठी भी ऐसी ही एक अमिट कहानी है, जिसमें एक सैनिक का अपने परिवार के प्रति प्रेम भी है और मातृभूमि के लिए समर्पण भी। यह चिट्ठी केवल अर्जुन की आवाज नहीं, बल्कि हर उस सैनिक की आवाज है जो अपने घर की खुशियों से दूर रहकर हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करता है, जो अपने सपनों का त्याग कर देता है ताकि देश के करोड़ों लोग चैन की नींद सो सकें। ऐसे वीर कभी मरते नहीं, वे इतिहास बनकर सदैव जीवित रहते।

दोस्तों, अभी आपने सुना नाटक पुनः प्रस्तुति में आखिरी चिट्ठी, निर्देशन नवीन सिसोदिया, लेखक डॉक्टर विशाल छाबड़ा, सूत्रधार राजेश चड्ढा, प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, रश्मि छाबड़ा, सुमन कंवर, गुलशन मेघानी, रजनी मोदी, अक्षत चावला, देवेंद्र रोकणा, देव मेघानी और मोहनलाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित युवाणी कार्यक्रम मेगा।

सपना इस संदेश से पहली बॉर्डर फिल्म का ये गीत आवाजें थी सोनू निगम, रूप कुमार और उनके साथियों की। नीचे चलते हैं कुछ और नए विषय की ओर। कोई फादर, कोई काजी, कोई है सन्यासी, एक साथ जब खड़े हो हम तो सिर्फ है भारतवासी। श्रोताओ, भारत यानी हमारा भारत केवल देश नहीं बल्कि विविधताओं से भरा एक जीवंत सांस्कृतिक संसार है। यहाँ अनेक भाषाएं, वेशभूषाएं, परंपराएं, त्योहार और रीति रिवाज, फिर भी सबको जोड़ने वाला एक अदृश्य सूत्र है भारतीय संस्कृति। हमारे देश में सभी धर्म ग्रंथों को स्थान मिला है, चाहे कुरान हो या बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब हो या गीता, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर, सभी ने मानव मात्र की एकता और शांति की महायात्रा पर बल दिया। दोस्तों, भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हों, सभी धर्मों का आदर करना हम जानते हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करेगी? दोस्तों, एकता का अर्थ यह है नहीं कि किसी विषय पर मतभेद ही ना हो। मतभेद होने के बावजूद भी जो सुखद और सबके हित में है उसे हम सभी एक रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों, भाषाओं और समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी भारतीय होने के गौरव से जुड़े हैं। संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्य आप सभी ने सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यही भावना भारतीय संस्कृति की आत्मा है। दोस्तों, लीजिए इसी विषय को हम छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक विद्यालय में विभिन्न राज्यों से आए बच्चे पढ़ते थे। कोई राजस्थान से था, कोई पंजाब से, और कोई तमिलनाडु से, तो कोई बंगाल से। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी बच्चों ने अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार डांस कंपटीशन में और गीत प्रस्तुति में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने पूछा, तुम सब अलग अलग प्रदेशों से हो फिर भी एक साथ इतनी प्रेम से कैसे रहते हो? तो दोस्तों, एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर हमारे कपड़े अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। तो उनके प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें सीख मिलती है कि विविधता होने के बावजूद एकता बनाए रखना ही भारतीय संस्कृति का वास्तविक रूप है। हमारा देश त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, वैसाखी, अनेक धर्म ग्रंथों के त्योहार उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं। त्योहार केवल आनंद का अवसर नहीं देते दोस्तों, बल्कि सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश भी देते हैं। वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के इस युग में भारतीय संस्कृति का महत्व और भी बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है। आज के समय में वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण कई सांस्कृतिक मूल्य धीरे धीरे लुप्त होते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी अपनी परंपराओं से दूर ना होकर अगर हमारी संस्कृति से अटैच रहे तो इस सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा जा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है दोस्तों, हमारा गौरव है, हमारी अमूल्य धरोहर है। लीजिए इसी विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। बातों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो।
4: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दी,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: दोस्तों, अभी आपने

श्रोताओं, युवाणी कार्यक्रम के बुधवार के आपके पसंद प्रोग्राम में आप भी अपने पत्र हमें भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। दोस्तों, गीत सुनने के लिए एक पोस्ट कार्ड लीजिए, उसमें लिखिए गीत के बोल, फिल्म का नाम और लिखकर हमें भेज दीजिए। FM 100.1 MHz पर अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए दोस्तों हमारा पता है आपकी पसंद प्रोग्राम द्वारा केंद्र निर्देशक युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़, पिन कोड है 335804। दोस्तों, हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे।

दोस्तों छोटी सी तो जिंदगी है, हंसते हुए जिए। कौन से हमें हमारे सुख दुख साथ लेके जाने हैं। वक्त कभी नहीं ठहरता। हमारा आने वाला पल, अगला पल क्या होगा, कैसा होगा, हम में से कोई नहीं जानता। एट प्रेजेंट आप जो हैं, आपके पास जो पल है, आपके साथ जो लोग हैं, उसी का आनंद लीजिए, खुश रहिए।

0: वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लीजिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। श्रोताओं, एक ऐसी तकनीक जो रोचक दुनिया में आपको ले जाती है, जिसने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब। लीजिए जानेंगे इस विषय के बारे में। आज हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी कुछ ही सेकंड में इजीली प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई, व्यापार, बैंकिंग, समाचार, चिकित्सा या फिर संचार हो, लगभग दोस्तों हर क्षेत्र में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज के टाइम।

में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातों को। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ नहीं है दोस्तों। इंटरनेट एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे संक्षेप में WWW कहा जाता है, इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों और वेब पृष्ठों का एक विशाल संग्रह है। या फिर दोस्तों हम सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट सड़क है और वर्ल्ड वाइड वेब उस सड़क पर चलने वाले वाहनों की तरह है। दोस्तों जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तब हम WWW का यूज़ करते हैं। इसका आविष्कार वर्ष 1989 में किया गया और इसके जनक है, उन्होंने स्विट्जरलैंड स्थित में कार्य करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिससे वैज्ञानिक आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। उनका प्रसिद्ध कथन, द वेब डज नॉट जस्ट कनेक्ट मशीन्स, इट कनेक्ट्स पीपल। वेब केवल मशीनों का नहीं बल्कि लोगों को जोड़ता है। दोस्तों वेब कैसे काम करता है, लीजिए जान लेते हैं। जब हम किसी वेबसाइट का पता अपने ब्राउजर में लिखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर से संपर्क करता है। सर्वर आवश्यक जानकारी भेजता है और वह जानकारी हमारे मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। वेब के तीन मुख्य आधार भी हैं, HTML, URL और HTTP। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वेब पेज बनाने की मूल भाषा है दोस्तों। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह किसी वेबसाइट का पता होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस उसका URL कहलाता है, और इन्हीं के साथ है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वह नियम प्रणाली है जिसके माध्यम से वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच जानकारी का आदान प्रदान होता है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड वेब क्रांति लेकर आया है। विद्यार्थी अब ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं, डिजिटल बुक्स पढ़ सकते हैं, शोध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। COVID-19 महामारी के दौरान वेब ने शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में अपनी खास भूमिका निभाई थी। तकनीक स्वयं में सब कुछ नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने जाना वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, बातें तो हम और भी करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित। लीजिए अब हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसे ही महापुरुष जिन्होंने पूरा विश्व शांति और मानवता का प्रतीक मानता है। महात्मा गांधी जी का जीवन। दोस्तों गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक दर्शन और एक आंदोलन थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, अहिंसा और दृढ़ संकल्प के बल पर बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक संस्कारी महिला थी। दोस्तों बचपन से ही गांधी जी सत्यवादी, सरल और अनुशासित स्वभाव के थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, सत्य ही मेरा ईश्वर है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की और फिर उन्होंने कानून की शिक्षा पूरी की। 1891 में भारत लौट आए और वकालत में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से स्थायी समाधान नहीं निकलता। उन्होंने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का आधार बताया। दोस्तों सत्याग्रह का अर्थ यानी सत्य के लिए आग्रह करना, न्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक संघर्ष करना। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित में भी काम किया। दोस्तों वे कहते थे, आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद में परिवर्तन लाइए। समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी होता है। तो लीजिए हमने जाना एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में। आखिर में सुनाते हैं कार्यक्रम का एक आखिरी गीत।

तो कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी भी उसी के आगे सर झुकाती है। लीजिए आज का युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नए विषय कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे हमारा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल अप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की। इसमें आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की कड़ी संख्या 5वीं। चौपाल कार्यक्रम संध्या 7 बजे और विषय रहेंगे जानकारी के वर्मी कंपोस्ट, एक लघु उद्योग, मछली पालन, जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और उपलब्ध है तो बाजार भाव मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी भक्ति गीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चंद गजलें, कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। आइए अब सुने कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सवेरे 6:50 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन। सवेरे 6:45 पर विषय रहेगा मानव और वाचक स्वर होंगे शिवदयाल शर्मा के। कार्यक्रम विवरण सवेरे 6:50 पर। खेतियान अवस्थे कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर जानकारी का विषय होगा मूंगफली की उन्नत खेती। मानसगंज की 274वीं कड़ी संख्या सुनवाई जाएगी सुबह 7:20 पर। सवेरे 7:30 पर सुप्रभात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा बालिका शिक्षा का महत्व, क्षमा से बड़ा धर्म नहीं, जीवन में भरे उमंग। सुगम संगीत में चंद भजन सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। राजस्थान लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में कलाकार होंगे बुंदू खां लंगा और साथी सवेरे 9:10 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सदाबहार नगमे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सवेरे 10 बजे। सवेरे 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम विवरण दोपहर 12 बजे। कुछ बातें कुछ गीत दोपहर 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें सुने दोपहर 12:30 पर। खेत खिलान कार्यक्रम में दोपहर 12:50 पर जानकारी का विषय होगा प्राकृतिक खेती का एक लाभकारी कृषि पद्धति। महिला जगत कार्यक्रम दिन में 1:05 पर और विषय रहेंगे विश्व रक्तदाता दिवस, होम डेकोर से लाए घर में पॉजिटिव एनर्जी। जानकारी रखिए ट्रैफिक नियमों की और उत्तर प्रदेश के विशेष व्यंजन विषय पर जानकारी। फिल्म संगीत दिन में 2:30 पर। संध्या 3 बजे आप सुनेंगे उर्दू सर्विस आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। युववाणी कार्यक्रम संध्या 5 बजे और इसमें जानकारी के विषय होंगे यूथ लाइफ में संगीत का प्रभाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मीडिया और समाज, कर्तव्यनिष्ठा, आज का इतिहास। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे एजबेस्टन बर्गिन में क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाली ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले

क्रिकेट मैच की आंखों देखा हाल ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। समय एक बार फिर से सुनिए, संध्या 7 बजे। ये आंखों देखा हाल आप मैच की समाप्ति तक सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। श्रोताओ, हम आपको पुनः याद दिला दें, कल रात्रि 9:15 पर आप T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का सीधा प्रसारण सुनेंगे और ये कल हम आपको इसका प्रसारण उपलब्ध कराएंगे 7:00। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या की 6:05 होने वाले हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम सराय की। आज आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम की कड़ी संख्या 5वीं।

0: साफ तौर पर मिलती है। पंजाब के हिंदू तबके शादियां के मौके उत्ते तिल मेथरे ना की एक रसम अदा की जाती है। इन रसम नाल तलक रखने वाले एक लोक गीत में यह आख्या गया, सस नूं दे तिल मेथरे, जिमें जिमें सस तिल चुने सी तीवें तीवें नूं पुत्र जने सी, पुत्र जने सी सत पुत्री थी सी। इवें घर में कई औरत दे जनेपे दे मौके ते एक कड़ियां गिणन दी जनेपे या प्रसूत तों बाद किड़ी उत्ते लेटी हुई औरत को छत दियां कड़ियां गिणन वास्ते आख्या वेंदे अते ये मन्या वेंदे कि सुते सुते वो जीती कड़ियां गिणे सी वो उत्ती वो पुत्र जने सी। ई मौके उत्ते एक गावण विच औरतां इवें बुलेंजन, इहो वेला ही झोली भरन दा, गिण गिण कड़ियां ते भर गिण झोली, पुत्रां दी दौलत जीती होवे उत्ती थोली। इन्हां दे मुकाबले धीआं छोदियां तां पराया धन जां परदेस ना मन्या वेंजन, क्योंकि उन्हां तां चिड़ियां दे चंबे दी तरह हेक जाड़े उड़ वंजना होंदे। ई तों इलावा उन्हां को जिहड़ी दाज दे ते दित्ती वेंदी है हूं करके भी उन्हां को एक तरह का बोझ मन्या वेंदे। ई करके सरायकी देहक बे लोग गावण विच पहाके दे तौर ते इह आख्या वेंदे, साग ते लगे भाग दे चा पुत्रां को, दाल ते टब्बर पाल दे चा नूरी को, तीवन पूजा दे चा धीरी को। ई तरह असां देखदे हां कि पुरानी रिवायत ते सारे समाजिक ढांचे दे मुताबिक धीआं दी निस्बत पुत्रां दी अहमियत बहुत ज़्यादा मन्नी वेंदी है, क्योंकि उन्हां को खानदान दे ना को चलाउण वाले अते अपने घराने दी सारी जिम्मेवारी निभाउण वाले मन्या वेंदे। ई वास्ते ई पहाके दे विच उन्हां को खानदान अते टब्बर दा निशान आख्या गया। ई तों पिछों ही पहाके दे विच तीजी गल इह आखी गई है कि साडी गुजरान दा सब तों वड्डा अते जरूरी वसीला पैसा यानी दौलत है। सच पुछो सारे रिश्ते नाते सके संबंधी पैसे की बदल नाल ही चलते हैं। कई मुल्क की आबादी भावें कीती होवे जे उन्हें कोल पैसा या दौलत नहीं होंगी तो उनको हमेशा गरीब पसमानदा अते हीणा मन्या वेंदे। ई तरह नाल असां देखदे हां कि ई पहाके दा तीजा हिस्सा भी एक अटल सच्चाई की गाल करेंदे अते जिंदगी की एक हकीकत बयान करेंदे। ई पहाके दियां त्रिहाएं गालीं कनू कोई इनकारी नहीं थी सकदा, अपनी ही सच्चाई अते हकीकत की वजह नाल ये पहाका जिथा आप कई सदियां तो कायम है उथां इह साकू सब को जिंदगी की हकीकत वाकिफ करा के कदम कदम उत्ते साडी रहनुमाई करेंदे। दूजे कई पहाकियां की तरह ये भी एक लाफानी पहाका है।
1: ਸਾਮਿੰਗ ਇਹ ਹਨ ਸਹੀ ਓ ਪੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨਾਂ ਕਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਸਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਸਈ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਈ ਬੇਦਿਲ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ।

0: आईना साज को पूछो ए तमाशा क्या है, अक्स दा ना ही जलवा है तो जलवा क्या है, नफे नुकसान दे चक्कर च उम्र लंघ गई सारी, पता हुन तीक भी ना लगा कि मिलया क्या है। सामेईन हुणे तुसीं सुणदे पियावे सई सलीम इकबाल दी आवाज च सई बेदल सरहदी दी एक गजल। सामेईन इहदे नाल ही साडा अज दा प्रोग्राम खत्म थींदा है। प्रोग्राम दे बारे च अपने सुझाव ते विचार साकूं जरूर भेजो, साडा पता नोट कर गिनो, झोक माही दी मार्फत स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जालंधर। तुहाडे खादा साकूं इंतजार असी कल इया वेले वत मिलसूं। हुण डी एस संधू को इजाजत दिओ, खुदा हाफिज।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सराय की। आज आपने इसमें सुना कड़ी संख्या 5वीं। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब आप थोड़ी देर में
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल, महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त, 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जाँच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
3: भारत खाद्य

0: कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की।

0: स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
1: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहां प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करना।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे, इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक

0: बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जनकल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। चिकित्सकों को आवश्यक

0: निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफ़ा 9 महिला कैडेट शामिल। महिला मारी अगुवाई में विकास री दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोचूं देश बरकत रा गेला माथे चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो, पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है, जो महिलाओं री अगुवाई माए विकास री दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौर सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वे ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वे दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमानी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32

0: हादसा रो शिकार फेंक्यो इ कारण पांच जवान शहीद फेंक्या वायुसेना कन्यू करीचिया सोशल मीडिया पोस्टर मुजब हादसा रे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वेकी हादसा री ठौड़ सरवाती जांच सागे जरूरी कार्रवाई करी जा रही है ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रे बारा माए ग्लोबल फोरम और फार्मर साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी री जी है भारत री सदारत माए भी आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सलेंस सेंटर बनावन रोई फैसलो कीनो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है
1: भारत खाद्य सुरक्षा कृषि व्यापार जलवायु परिवर्तन डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा पोषण आजीविका कृषि व्यापार नवाचार निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माए बदलाव रेठा करण सारू बनाई चिया आयोग ने सरहदी जिला माए आबादी रा बदलाव री जानकारी करण बाबत कहो है वे आज इंबारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगरा और औद्योगिक शहरां रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन सारूई कहो ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी माए बदलाव न रोकने रा उपाय सुझावन सारू आला दर्जा री समिति बनाई है देश माए लाडला 10 साल माए जन्म री बगत हर 1000 लड़का ने मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 बदर 929 वेगी है स्कूलां माए माध्यमिक स्तर माथे टाबनियां री तादाद 75 बदर 80% रे करीब वेगी है महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर माए टाबनियां ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ कोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई आज भारत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है
0: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है पहली 8 प्रति व्यक्ति आय ₹69,000 सालाना ही जो अब बेधर ₹2,00,000 बत्ती वे की है मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी इस आ गई प्रदर्शनियां रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगां ने दी जा रही है प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए जनता की समस्याओं मौके निपटार वन सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनाओं जोड़ी जा रही है जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वन ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो
3: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो भाइयों का बीमा करवाया

0: था जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम अमला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है और ग्रामीण सेवा केंद्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजन लाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: पालीरा गुढ़ा एंदला में लगाई चे ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार काने ऑनलाइन तरीकों दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रजरिये पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवार न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तहत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवार री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताईचियो है। ई दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन री शंका है। इन बीचे लाड़ला 24 घंटा माए कई ठोड़ा बिरखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ माए बरसियो। श्री गंगानगर चूरू और सीकर माए उड़ा पड़िया जिनू तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात सरूफियो बारिश रो दौर रुक रुक कर आज सवारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात भी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। दूजिकानी जैसलमेर में जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यो वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने शाखा री कटाई अरवाने भिड़ीकरण रा काम माए सावचेती राखण सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशा माए भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र माए लोगों ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला माए प्रदेश माए कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इन बीच अहमदाबाद माए भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप माए सोनारा 2 तमगा जीतन वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
2: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं को आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
1: जयपुर फौजी स्टेशन माए शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए फौज और सिविल सोसाइटी बीच मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ले राउसा 1800-11-7800। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भिया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरू ओ दौरो खास मान्यो चाचियो है। इरा पहला दौर माए काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माए वे काल ही स्लोवाकिया सारू रवाना भेजा वेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माए 16-17 जून ने वेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माए शामिल वेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माए विवाटेक सम्मेलन माए शिरकत करेला।

0: आखिर में खास समाचार एक बार फिर सुन ले रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास रे दिशा में खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माई साफ गोई और नीतियां माई आगे री सोच उन देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माई कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 102.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण परिवार अपना दैनिक कार्यक्रम सुने चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळ्या किसान परिवाराने सज्जन भाई की घणी घणी और मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों आपां देखा कि खेती जी की है, खेती में कई बार आपां देखा कि आपां जितनी मेहनत करा भी तो फायदो आपां होवे कोनी और कई बार तो फसल इतनी कम होवे कि बिंग में आपां ने खर्चो काढ़नी मुश्किल हो जाए। तो टेम के सागे सागे किसान भाइयों आपां ने खेती पाती के सागे सागे और भी जिका है आमदनी का काम धंधा जिका करना चाहिए। और किसान भाइयों खेती से जुड़ेड़ा ही घणकरा सा काम धंधा है जिका मैं अच्छी आपन आमदनी हो सके है, जिका मैं आपने और अलग छूँ कि ज़्यादा करनो को नहीं। खेती के सागे सागे खेती पाती का जिका काम करा बिंगे सागे सागे आपन जिका दूसरा काम धंधा भी कर सका हाँ, जी सूँ क्या है कि आपने अच्छी आमदनी हो जाए। अब जिया मान लो आप पशुपालन भी कराई हाँ और किसान भाई जी का है पशुपालन, आप देखा कि पशुपालन छू जी को उत्पादन होवे भी उत्पादकता छू भी किसान भाई जी का है लाभ कमावे है और पशुपालन भी खेती पाती से जुड़े है। इस तरह आप आज बात करांगा वर्मी कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट खाद बना के और बीच में भी किसान भाई जी को है भी खाद ने बेच के और लाभ कमा सके है। क्योंकि देखो किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट खाद जी की है इंग आज सह से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखा कि खेती का माँ जी आप रासायनिक खादा काम में लेवा हाँ बाछूँ जमीन की जिकी उपजाऊ शक्ति है बात तो कम हो ही हुआ है और इंगा सागे सागे जिको मिन खांगो स्वास्थ्य है बी खातर भी बा घनी अच्छी कौन मानी देनी। तो इं करके आपने रासायनिक खादा की जगह एक तो वर्मी जिकी कंपोस्ट खाद आ ज़्यादा काम में लेनी चाहिए और इन्हें बना के आप और बेच के भी ना आपा इसमें आप लाभ कमा सका। और वर्मी कंपोस्ट की बात करा किसान भाइयों तो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ की मदद से तैयार होने वाली एक जैविक खाद है और जो कि किसानों खातर अगर आप बात करा तो एक वरदान छू कम नहीं है। तो इं करके बात करा आज आप वर्मी कंपोस्ट की, तो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ की मदद से आप इन्हें तैयार कर सका हाँ और आज जैविक खाद होवे इंगे सागे सागे गोबर है सूखी पत्तियां है और फसलों की जिया कचरो है कोई तूड़ी है और बाकी जिका दूसरा जिका जैविक पदार्थ होवे बाछू आप खाद जिके तैयार कर सका हाँ। और इं खाद छू बहुत सारा खेत में फायदा भी हुए है और इं काम ने देखो शुरू करन खातर आपने कि गोबर की जरूरत हो तो अपने घर में पशुधन जिका है बंगू जी को गोबर है मलमूत्र है और खेत छू आप सूखी पत्तियां है या कचरो है घास फूस जिका है और सागे सागे केंचुआ जिका है भी आप कोई कृषि विज्ञान केंद्र छू जी जी जगह छू भी आप मिले भी छू ले गए और आप वो काम जो का शुरू कर सका। इं खातर आप बात करा जगह की तो अपने छायादार जगह चाहिए और सागे पानी की व्यवस्था होवे और कोई भी सीमेंट की खेली है या फिर आप कोई खाडो खोद गए और बिंगमा भी आप कोई भी जी की पन्नी वगैरह बिछा गए मेणियों जी का ना आप बोला और बिछू भी आप जो है

बनासका या फिर सारों अच्छो तरीको तो है कि खाडो खोद के और ईंटें और सीमेंट की मदद से बैठे कोई खेली या होदी बना लिया बिंग मापा वो काम जो को शुरू कर सका। हाँ तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आप बात करा कि वर्मी कंपोस्ट है जिकि आप इन बनावा किया, तो वर्मी कंपोस्ट का माँ जी अभी आप बात करी कि घास फूस है, गोबर है, पशुधन को जो को गोबर है जिका है, बाकी फसल का जिका अवशेष है आज आप बनास कहाँ, और इन्हें आप कोई भी जियाँ खाडो खोद गए कोई होदी है या फिर और कोई जिया आप कोई ड्रम हो गयो या फिर और कोई जिया लकड़ी को कोई डब्बो एक आप बना लिया तो बिंग माँ भी आप इन्हें कर सका। हाँ पर सारों बदिया सीमेंट आलू जी को है होदी जी की बात छी मानी जाए तो इंग माँ लंबाई चौड़ाई जी की आप अपनी जगह जितनी हुए बिंग अनुसार आप ले लिया, और इंगी गहराई की बात करा या नीचे ऊंचाई की बात करा तो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है, और इंग माँ नीचे सबसे पहली आप लगभग 5 सेंटीमीटर मोटो जी को कचरो है घास फूस है या फसलों का डंठल है आंगी एक तय बिछा दिया, बीम बाद में इन ऊपर बिल्कुल जे को सड़ेड़ो गोबर हुए बिंगी 5 सेंटीमीटर की एक तय बिछा दें, बीम बाद में इन्हें आप पानी छिड़क दें और इन ऊपर लगभग आप 1015 केंचुआ जी का है प्रति मीटर की दर से आप छोड़ना चाहिए। तो आप जिकी भी बा होदी बनावा या जिकी भी चीज़ में आप इन्हें तैयार करा तो बिंग माँ प्रति मीटर का माँ 100 1500 केंचुआ की अपन जरूरत पड़ सी तो आप अपने जिग्ञा के अनुसार जिका है केंचुआ की मात्रा आप बिंग माँ छोड़ दें, और इन ऊपर फिर सड़ेड़ो जो गोबर है बीच में आप खाद बना सका। हाँ और यूँ बाद में इन आप कोई भी जिया कोई टाट है या जूट की बोरी है या फिर पुआल है बीच में आप इन्हें ढक दें और रोज़ की आप इन ऊपर किया कि जरूरत अनुसार इन ऊपर आप पानी को छिड़काव कर दें जिस क्या नमी को जो को स्तर है वो 40% से ज़्यादा रहना चाहिए, और जगह जिकी है किसान भाइयों विशेष रूप से अपन ध्यान रखना कि वह छायादार होनी चाहिए और बिंग कन्या पानी नहीं खड़े होना चाहिए। कई बार आप देखा कि कुदरती कोई बिरखा हो जाए या फिर खेत में घटी तैयार करा तो पानी खेत में देते टाइम पानी लगाते टाइम तो बैठे पानी जी को खड़े नहीं होना चाहिए, तो इंग अपन ने जरूर अपन ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाइयों इंग तैयार होने की टाइम की बात करा तो 60 70 दिन में बन गए तैयार हो जाए, और बीहू बाद में 45 दिनों बाद में आप पानी देना जो को बंद कर देना चाहिए और जिका जूट का बोरा है वे भी आपा ने हटा देना चाहिए। बोरा का हटाने बाद में खाद जी की है सूख गए और तैयार हो जाए, और केंचुआ जी का धीरे धीरे नीचे जट है नमी हुए पानी की मात्रा हुए वे नीचे उड़ जाए और बिंग ऊपर ऊपर आप जी की सूखेड़ी खाद जी की तैयार हो रही है बिना आप धीरे धीरे अलग करता जावा, और यूँ बाद में ई विधि आप दोबारा जी की खाद आप तैयार कर सका। हाँ तो किसान भाइयों इस तरह आप एक बढ़िया खाद तैयार करके और आप इन्हें बेच गए और अच्छो जी को है लाभ आप कमा सका। हाँ और किसान भाइयों सागे सागे इंग अगर आप फायदे की बात करें किसान भाइयों तो इंगा देखो बहुत सारा फायदा है, जमीन की देखो उर्वरा शक्ति तो ज़्यादा हो ही हुए है पर इंगा सागे सागे जी की फसल की गुणवत्ता है नहीं बिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, तो जी की अच्छी गुणवत्ता की जी की पैदावार है नहीं तो बिंग आप देखा कि बाजार में आपने भाव भी जी का ज़्यादा मिले, और सागे सागे जी की रासायनिक खाद आप काम में लेवा तो बंगो भी प्रयोग कम होने लाग जाए तो बीच में भी खर्चो जो को अपनों कम होने लाग जाए क्योंकि रासायनिक खादा के ऊपर खर्चो जो को बहुत ज़्यादा हुआ है, और सागे सागे देखो अपने घर के माँ भी और भी बाकी का जिका लोग है तो वे भी वो काम करके और आपा मिलजुल के वो काम करके और इसमें आपा पैसा कमा सका, और सागे सागे मीन खाऊँ जो को स्वास्थ्य है और जिका अपना पेड़ पौधा है अपना आसा पासा का जो को वातावरण है वो भी एकदम जो को है शुद्ध रहे। तो किसान भैया देखो बहुत सारा इनका फायदा है और सागे सागे किसान भैया खातर भी एक वरदान ही है जिकी वर्मी कंपोस्ट कहा दे कि इसमें खेत जी को अच्छो रहे और सागे सागे आप इनको लाभ भी कमा सका, तो देखो वर्मी कंपोस्ट का तो बहुत सारा फायदा ही फायदा है। किसान भैयो और भी आपा बातें चीतें कर सियाँ पर पहले आपा सुन लिया एक भजन लियो सुनो सा।

किसान भाइयों सुनो भी आपां भजन। किसान भाइयों आपां बात कर रहा हाँ कि खेती के सागे सागे किसान भाई जी का है और बाकी का जी का काम धंधा जी का खेती से जुड़ा है, बने भी कर गए और आपां लाभ कमास कहाँ। आपां भी बात करी ही भजन सुनने से पहला कि वर्मी कंपोस्ट से आपां की तरह बिंग लाभ आपां लेस कहाँ। तो इतने आपां और भी जी का काम है बांगी बात करा तो मछली पालन जी को है वो भी एक अच्छो और लाभदायक जी को है व्यवसाय है। तो मछली पालनों देखो इसमें भी आपने खूब लाभ हो सके है और इन खातर आपने एक तालाब की जरूरत पड़े जिसों की बीमा आप पानी भर गए और बीमा आप मछली जी की है पाल सका। और तालाब खातर किसान भाइयों आपने विशेष रूप से आपने ध्यान रखना चाहिए कि कई किसान भाई है जिकांगा खेत में आप देखा कि कोई इत रंगी जमीन हो जैठे कि कम खेती बाड़ी होती हो या पैदावार जी की कम हो या कई जगह तो इसी है जैठे कि आप खेती करी कौन सका। तो बीस जगह आप है इतना तालाब बना गए और बिंग मापा मछली पाल गए और बीच में भी आपा लाभ कमास कहाँ। और जगह की बात करें तो देखो जिक निवाण वाली जगह होवे जैठे कोई खाडो होवे तो वह जगह होवे तो सारों अच्छे क्योंकि बैठे तालाब बनाना है जो बहुत ही सोरो होवे और पानी भी मैं आपा आराम से बिंग मापा भर सका हाँ। और नहीं तो अगर खेत जे सीधो है तो भी जगह भी आपा तालाब बना के और बिंग मछली पाल सका हाँ। पर जगह को चुनाव इस तरह करा कि बिंग में तालाब बनाने खातर आपा ने ज़्यादा खर्चो ना आवे। कई बार आप देखा कि जगह जी की है बहुत ज़्यादा पक्की होवे या फिर कोई पथरीली जगह होवे जैठा कोई आप देखा कांकरा होवे या फिर बहुत ही ज़्यादा पक्की जगह होवे तो बिंगो भी आप विशेष रूप से आप ध्यान रखा कि इस तरह की जगह होनी चाहिए जिसका कम आप खर्चो जो को अपना है वो कम आवे। तो ऐसा अगली बात अपन ध्यान रख गए और अपने तालाब को जो को निर्माण कर गए और बीहू बाद में आप पानी में मछली जी की आप पाल सका हाँ। पर किसान भाइयों कोई भी काम करने से पहले आपने बिंगी जानकारी जी की है बातचीत तरह आपने ले लेनी चाहिए क्योंकि कई बार क्यों है कि आपने पूरी जानकारी नहीं हुआ तो बीच में नुकसान भी हो सके है। तो इन करके अपना जिका डाक दर्जी है या फिर जिका पशु विज्ञान केंद्र हुआ आप बीस जगह से आप इनकी

जानकारी लेस कहाँ अच्छी तरह की जानकारी लेगे कि हम अपन की चीज़ों की जरूरत पड़े और की तरह आप पाल सका हाँ और किस्मों की भी आप अच्छी तरह जानकारी ले लें और जिकी किस्मों की बाजार में मांग ज़्यादा हो तो वह जिकी किस्म है वह इंगे जिकी नस्ल है तो भंगी अपन के काम में लेगे और वंग पालन करके अपन ने मछली जी को पालन करना चाहिए। इंगे सागे सागे किसान भाइयों माटी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मछली पालन के माँ तालाब में चीकनी माटी हुए तो वह ज़्यादा अच्छी मानी जाए तो इं करके हमेशा ही आप माटी को जरूर ध्यान रखा क्योंकि कई जी की माटी है वे पानी जी की है ज़्यादा सोख ले तो बीच में अपन पानी की कमी आ सके और बारी बारी अपन तालाब भरना पड़ सी पर चीकनी माटी जी की है वह कम पानी सोख है और चीकनी माटी सागे सागे मुलायम भी हुआ तो वह मछली पालन खातर जी की है बहुत ही अच्छी मानी जाए है और नरम माटी हुआ है तो इं करके भी अच्छी मानी जाए तो इं करके आप माटी को विशेष रूप से आप ध्यान रखना चाहिए और इंगे सागे सागे जी को तालाब की पेंदी है बिंगो भी अपन ध्यान रखा ढलान को भी अपन बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और तालाब के माँ अपन ने पानी छोड़ने को और पानी निकासी को जिको है दोनों ही पानी भरनो और पानी निकासी दोनों जी की है वे जगह अपन जरूर छोड़नी चाहिए। कई बार के कि पानी ज़्यादा हो जाए तो बिंग में अपन पानी काटना पड़े बारे तो निकासी जरूर होनी चाहिए और भी निकासी के माँ एक लोग ही जाली जरूर लागड़ी हुआ है जिसमें कि मछलियाँ जिकिया बारे ना जावे इस तरह ही पानी भरने की भी जगह में अपन एक जगह अपन रखनी चाहिए। कई बार ये है कि तालाब के आस पास कोई पानी भर जाए या फिर कोई बिरखा ज़्यादा हो जाए तो बीच में भी किया फिर तालाब जिको है वो टूटने को डर रहे क्योंकि कई बार अपन देखा कि तालाब जिको अपना समतल भूमि पर बनावा तो बिंग आस पास अपन डोला बनाना पड़ा तो वह डोला जिका टूटने को अपन डर रहे तो इन करके अपन इनको ध्यान रखना है। और सागे सागे किसान भाइयों आप बात करांगा पानी की तो पानी की जो तालाब ने अपन के बारी बारी बिना भरना पड़े तो ये करके अपन पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और पानी जो है कन्या होना चाहिए जिसमें कि तालाब भरने में आसानी रहे अपन ने और इंगे आप आकार और गहराई की बात करें तो देखो इंगो जो आकार है इन अपन ने लंबो ज़्यादा रखना चाहिए इन चौरस ना बनावा आप और चौरस बनावा तो इतो ही लंबो चौड़ो बनावा जिसमें कि मछली पकड़ने में अपन ने आसानी हो तो इंगे जी की लंबाई चौड़ाई की अगर आप बात करें तो अपन लंबाई तो आप ज़्यादा रख सकें पर चौड़ाई जिकी है वह 50 मीटरों ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए जिसमें क्या कि जाल छूँ आप मछली जिकी है बाद में आसानी से आप पकड़ सकें। और गहराई की बात करें किसान भाइयों तो गहराई जिकी आएंगी 1.5-2 मीटर तक इन्हें गहरो बनाना चाहिए जिसमें क्या कि सूरज की जिकी किरणा है वह तले तई आसानी से और अच्छी तरह उड़ जाए तो आ बातों को अपन ध्यान रखना है। और इतने लंबाई चौड़ाई की अभी आप जहाँ बात करी कि ना आप लंबो आप ज़्यादा बनावा और चौड़ो जो है कम रखा चौड़ाई जी की है वह 50 मीटरों ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए जिसमें क्या कि मछली पकड़ने में अपने आसानी होवे और सागे सागे अच्छी देखभाल करा तो इसमें भी आप किसान भाई जी का है अच्छो लाभ कमास का है। कई बार आप देखा कि कोई रोगो प्रकोप हो जाए तो बी टाइम फिर आपने के बिल्कुल टेमो टाइम तुरतो फुरत आपने डाक दर्जी ने बुला गए और बी चीज़ को जो कोई इलाज जरूर अपन करना चाहिए क्योंकि इसमें कई बार क्या नुकसान ज़्यादा हो जाए और कई फैलने वाला रोग रोग हो तो भी इसमें फिर क्या मछलियाँ मरण लग जाए तो इसमें भी नुकसान हो जाए तो आ बातों को पहले अपन जानकारी अच्छी तरह लेंगे और भी बाद में अपन ये काम शुरू करना चाहिए जिसमें अपनों लाभ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और भी इसमें फायदा अपन ज़्यादा हो सी कर सियाँ किसान भाइयों बातचीत और पर पहले सुना आप गीत लियो सुनो सा।

बाल भाई रकान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी करा फैसलो नानी तो कंजूसर भाई नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर नानी बोली अर

कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग, कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग। ए जी कान्यो रोवे भाई नानी दौड़े।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों सुनो आपा गीत और अब आपा किसान भाइयों बात करा आपा जैविक जिका कार्बन है वे अपने खेत जिका है माटी जिकी है बी खातर बहुत ही जरूरी है। देखो

बात करा आप माटी की, तो आपने जमीन की जिकी ऊपर वाली सतह हुआ है, बिंग ऊपर जिकी माटी है, बिंग माँ भांत भांत का छोटा और मोटा और कई तो बहुत ही बिल्कुल ही सूक्ष्म जिका तत्व हुआ है। आने आप बोलना कार्बनिक है एक हुआ है, अह कार्बनिक जिका है कण। तो आँचू दोनों छू मिल गए और बिंग बाद में फिर माटी को जिकी बनतर हुआ है। कार्बनिक जिका पदार्थ हुआ है वह जी आप अपने खेत में भी जी आप बात करी कि पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, घास फूस है, गोबर है, मलमूत्र है पशुओं को, तो आंशु है जिकी खाद है, आंशु कार्बनिक पदार्थ बना। और कार्बनिक जिका कण होवे जिकी आपां रासायनिक खादा खेत गए काम धंधा में काम में लेवा हाँ, ए कार्बनिक जिका कण या ए कार्बनिक पदार्थ आपां ने बोल सका हाँ। तो किसान भाइयों जिका बात करनी आपां जैविक कार्बन जिका है, तो ए माटी में आपां मिलावा तो ए आपां ने ज़्यादा फायदो करे। तो अंग मजियाँ सूक्ष्म जीवी है, कीड़ा मकोड़ा है, और या फिर जिका बाकी माटी में मिलाने वाली आपने जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, पशुओं का जिका बिछावन है, राख है, तो यह जिका सगला है कार्बनिक पदार्थ है। और आप देखने लाग रहे हैं कि दिनों दिन जिको है बहुत ही बदलाव होने लाग रहा है वातावरण में, तो भी ने देखता है अभी अपन जिक है जैविक जिका कार्बन है वह खेत में ज़्यादा काम में अपन ने लेना चाहिए। और इसमें किसान भाइयों आपा ने फायदों भी जिको है ज़्यादा हो। और इन सागे सागे आप बात करा कि जिका जीवांश पदार्थ है बंगो भी आपा ने फायदो बहुत हो। तो यही करके जिका जीवांश पदार्थ है अंगी उपस्थिति में अपन खेत में जिका कई जीवाणु जिका है वे अपने खेती पाती में जिका लाभ देवे है, तो वह भी ज़्यादा जिका है सक्रिय रेवे। और इंगे सागे सागे ईसू अपने माटी की जिको अम्लीय और क्षारीय जिको संतुलन होवे वो भी बिल्कुल एकदम सही रेवे। और इंगे सागे सागे आप देखा कि पौधा अंग खातर जिका जरूरी पोषक तत्व है बंगी जिकी उपलब्धता है वा भी माटी गमा पूरी हो जाए। तो ये करके आपा ने ज़्यादा रासायनिक खादा है या और जिकी दूसरी खादा है बने आपा ने कम आपा काम में लेवा, तो इसमें अपनों खर्चों भी बच से। किसान भाइयों इंगे प्रबंधन की बात करा तो इंगे प्रबंधन खातर आपन देखो एक तो फसल चक्कर जिको है जरूर आपा ने अपनाना चाहिए। बारी बारी आपने एक ही फसल की बिजाई करने की बजाय आपने भांत भांत की फसलें जिकी वांगी बुआई अपन करनी चाहिए। और सागे सागे रासायनिक जिका उर्वरक है बंगे सागे सागे आपा कार्बनिक जिकी खाद है बिंगो आपा प्रयोग ज़्यादा करा। और फसल गैमा पलवार या मंचगो भी प्रयोग अपन करना चाहिए। और जैविक खेती है बिना अपनाना चाहिए आपा। देखो अपन जिकी पारंपरिक खेती करा बिंगी जगह आपने जैविक खेती आपा काम में लेवा, रासायनिक जिका है खाद उर्वरक है वे कम काम में लेवा, और जैविक खादा जिकी है वे ज़्यादा आपने काम में लेनी चाहिए। तो ईशू के कि भूमि के में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और पोषक तत्व भूमि में धीरे धीरे जिका है पूरा हो जाए। और खेत के माँ पानी को जिको बहाव है बिना भी आपने रोकना चाहिए। और सागे सागे आप देखा कि कठे कठे जठे बंजर अपनी भूमि है, जठे फसल कम हो गए तो किसान भाई की है कि बिना खाली छोड़ दे, तो बाजी की खाली या बेकार पड़े जी का खेत है तो बंग में आपा के पेड़ पौधा या रूख जी के भी आप जरूर आपन लगा दें। तो ईशू भी देखो आपने जिका मृदा गमा जी का जीवांश पदार्थ है बंग में भी खूब बढ़ोतरी हो गए। और सागे सागे किसान भाइयों आपने बाकी की भी जिकी कंपोस्ट खाद है या बाकी की भी जिकी जीवांश खाद है वह अपन काम में लेनी चाहिए, जैसे कि हरी खाद है तो हरी खाद भी अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन काम में लेनी चाहिए। तो ई चूंकि है कि आपने जिकी भूमि है बिंग जिकी सतह बा अच्छी हो जाए। और माटी की बात करा तो माटी एकदम भुरभुरी और इंगी जिकी बनतर है बा भी अच्छी हो जाए। और इंग माँ जितना आपने खेत के माँ पौधा ने जरूरत हो बिता पोषक तत्व तो है वह भी जिका है पूरा हो जाए। तो इं करके आप जैविक जिकी खादा है वह आपने ज़्यादा काम में लेनी चाहिए। और इंगे सागे सागे आप देखा कि फसलों का जिका अवशेष है वे कई बार आप देखा कि कई किसान भाई जिका है बने आग लगा दे भी, तो देखो किसान भाई जिका है जागरूक है और अच्छी तरह भी ये बात ने जाने हैं, पर फिर भी अपन कठे कठे कदे कदे अपन देखने ने मिले है कि किसान भाई जी का खेत में जी का अवशेष है बने आग लगा के और बने ख़त्म कर दे। तो इनके बजाय अपन के इनकी खाद अपन बना लेनी चाहिए और इन आपा खेत का माँ माटी का माँ मिला दें तो आपने ज़्यादा फायदों करें। तो किसान भाई इस तरह अपन जैविक जी की खाद है या उर्वरक है अन आपा ज़्यादा काम में लेवा तो आँसू जी का कार्बनिक जिका पदार्थ बने या कण जिका ना पाके वहाँ तो वह अपने खेत खातर जिका है ज़्यादा अच्छा मानी जाए। तो यूँ करके आपा ने टेमो टेम रासायनिक खादों को कम आपा काम में लेगी और कार्बनिक जिकी है या जैविक जिकी खाद है वह आपा ज़्यादा काम में लेवा। किसान भाइयों और भी बातचीता कर सा मौसम और बाजार भाव वाली पानड़ी भी आईडी है, पर बीचों पहली आपा सुन सा वो गीत लियो सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों सुनियो आपा सीमा मिश्रा को गाइडो गीत और अब बाजार भाव और मौसम वाली पानड़ी भी पूगती होगी है। तो पहली बात करें आपा बाजार भावांगी तो सूरतगढ़ मंडी में कणक का भाव रहा 2400 रुपया और जो बिक्या 2075 रुपया। सरसों की बात करें किसान भाइयों तो सरसों में नीचे का भाव जिका अब 6601 रुपया और ऊंची बोली लागी 7278 रुपया। ग्वार का भाव उगड़िया 5590 रुपया और ऊंचा में बिक्या 5652 रुपया। गंगानगर में सरसों का भाव रिया 6951 रुपया और ऊंचा में 7474 रुपया बिकी। चिणा बिक्या 5311 रुपया और ऊंचा में 5581 रुपया। कणक का भाव रिया 2370 रुपया। मूंग बिक्या 6900 रुपया। और मौसम की बात करें किसान भाइयों तो आने वाले 3-4 दिन तक कठे कठे ही बादलवाई और बिरखा की संभावना जताई है और सागे सागे हल्की फुल्की आंधी चालन की संभावना भी जिकी है जताई है। तो भी आप अपना जिका खेती का काम धंधा है वे आप मौसम के अनुसार कर लें और आंधी ना में किसान भाइयों थोड़ी सावचेती रखने की भी जरूरत है कि आंधी आवे तो आप इन्हें भी ना जानता हुआ तो कोई सही साफ सुथरी जगह पर आपने रुक जाना चाहिए और बाद में मौसम साफ हो जाए जदि आप आगे आपने जाना चाहिए। तो इतने आप देखा कि कई बार आंधी ज़्यादा हुआ तो भी इसमें नुकसान भी हो जाए। तो इतने आप अपने फसल बाड़ी है पशुधन है और आपों भी आपने सावचेतियों अपन पूरा आपने ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों अब अपन सुना एक रागनी लियो सुनो सा।

किसान भाइयों, सुनिए आप अभी रागनी, पर अब तो कार्यक्रम को टेम हो गयो है, तो आज को कार्यक्रम इतो ही। सज्जन भाई ने देव थे आज्ञा। राम राम सा राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए गोपी फिल्म से ये भक्ति गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, राजेंद्र किशन और साथियों की, गीत राजेंद्र किशन का और ये भक्ति संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने ये फिल्मी भक्ति गीत।

श्रोता, अभी आपने गोपी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और राजेंद्र कृष्ण की आवाज़ों में सुना ये फिल्मी भक्ति गीत। अगला फिल्मी भक्ति गीत हमने लिया है फिल्म लोफर से, आवाज़ महेंद्र कपूर की। इस फिल्मी भक्ति गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए जूली फिल्म से ये फिल्मी भक्ति गीत, आवाजें आशा भोसले उषा मंगेशकर की।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी भक्ति गीत। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। दोस्तों, कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत लेकर हम पहुंचे हैं आपकी सेवा में, और आपको ये पहले गीत की एक धुन हमने आप तक पहुंचाई है। निश्चित रूप से आप जान गए होंगे कि आज की फिल्म है जब जब फूल खिले। और दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करते हैं और बात करते हैं इन फिल्म की पटकथा की। श्रोताओं, ये फिल्म एक सुंदर भावनात्मक और सामाजिक संदेश देने वाली प्रेम कहानी, जिसमें सच्चे प्यार सामाजिक भेदभाव संस्कारों और आत्मसम्मान को बहुत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी कश्मीर की मनमोहक वादियों में रहने वाले एक सीधे साधे युवक राजा और एक अमीर आधुनिक परिवार की लड़की रीटा के इर्द गिर्द घूमती है। राजा कश्मीर की ढल झीलों पर शिकारा चलाकर अपना जीवन यापन करता है। वह गरीब है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। उसकी दुनिया झील, पहाड़ों, प्राकृतिक और उसकी बूढ़ी माँ तक सीमित है। वह पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ईमानदार, मेहनती और संस्कारी है। उसकी सादगी ही सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी ओर दोस्तों, रीटा एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है। वह शहर में पली और बढ़ी है, आधुनिक विचारों वाली युवती है। एक दिन वह छुट्टियां बिताने कश्मीर आती है। कश्मीर की सुंदरता उसे आकर्षित करती है और घूमने के लिए वह राजा के शिकारे की सेवा लेती है। शुरू में राजा और रीटा के बीच केवल ग्राहक और शिकारा चलाने वाले का संबंध होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। राजा रीटा हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता है। उसकी सादगी, निष्कपटता और सच्चाई रीटा को प्रभावित करती है। वहीं रीटा का विनम्र व्यवहार और उसकी मधुरता राजा के दिल में प्रेम के भाव जगा देती है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों, झीलों और पहाड़ों के बीच दोनों का प्रेम धीरे धीरे गहराता जाता है।

श्रोतो, कुछ समय बाद रीटा को एहसास होता है कि वह भी राजा से प्रेम करने लगी है। दोनों अपने अपने तरीके से इस प्रेम को महसूस करते हैं, हालांकि उनके सामाजिक स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन प्रेम इन सीमाओं को नहीं मानता। राजा के लिए रीटा उनकी पूरी दुनिया बन जाती है। जब रीटा की छुट्टियां समाप्त होने लगती है, तब दोनों के मन में बिछड़ने का डर पैदा होता है। वह विदा होने से पहले वे एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। राजा को विश्वास होता है कि उसका सच्चा प्रेम और वह एक दिन उसके साथ अवश्य होंगे। रीटा भी उससे वादा करती है उसे नहीं भूल पाएगी।

श्रोताओ, लेकिन जब रीटा अपने शहर लौटती है तब वास्तविक जीवन की कठिनाइयां सामने आने लगती है। रीटा का परिवार बहुत धनी और प्रतिष्ठित है। उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी किसी शिक्षित, संपन्न और उच्च वर्ग के युवक से हो। जब उन्हें राजा के बारे में पता चलता है तो वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। परिवार वालों को लगता है कि एक शिकारा चलाने वाला युवक उनकी बेटी की योग्य नहीं है। वे सामाजिक प्रतिष्ठा और भेदभाव को अधिक महत्व देते हैं। दूसरी ओर रीटा अपने प्रेम और परिवार के बीच फंस जाती है। वह राजा से प्रेम करती है लेकिन परिवार के दबाव उसके सामने में है। कुछ समय बाद दोस्तों परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि राजा शहर पहुंच जाता है। उसका उद्देश्य रीटा से मिलना है और अपने प्रेम को बचाना है, लेकिन शहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ के लोग उनके पहनावे, भाषा और व्यवहार का मजाक उड़ाते हैं। वे स्वयं को असहज महसूस करता है।

श्रोताओ, रीटा अब भी उससे प्रेम करती है और चाहती है कि वह समाज में स्वीकार बन सके, इसलिए वह राजा को आधुनिक तौर तरीके सिखाने का प्रयास करती है। राजा पढ़ना लिखना सीखता है, अच्छे कपड़े पहनता है और शहर के लोगों के बीच रहने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगता है। राजा का यह बदलाव आसान नहीं होता, उसे अपने पुराने जीवन और नई दुनिया के बीच संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ता है। कुछ लोग उसे केवल इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि वह गरीब पृष्ठभूमि से आया है, फिर भी वह हार नहीं मानता श्रोता, क्योंकि वह उसका उद्देश्य केवल रीटा के योग्य बनना है। समय के साथ राजा एक सभ्य और शिक्षित युवक की तरह व्यवहार करने लगता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में उसे यह महसूस होने लगता है कि आधुनिक समाज में बाहरी दिखावे को बहुत महत्व दिया जाता है। कई लोग दिल की अच्छाई के बजाय धन और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। इधर रीटा के जीवन में एक और युवक आता है जो उसके परिवार की पसंद होता है। वह शिक्षित, अमीर और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है। परिवार चाहता है कि रीटा उसी से विवाह करे। इसके कारण रीटा पर दबाव और बढ़ जाता है। राजा को धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि रीटा की दुनिया और उसकी दुनिया में बहुत अंतर है। उसे यह भी लगता है कि शायद वह रीटा के जीवन में बोझ बन सकता है। उसके मन में हीन भावना पैदा होने लगती है। हालांकि वह रीटा से बेहद प्रेम करता है, फिर भी उसके भविष्य के बारे में सोचने लगता है। कहानी का भावनात्मक मोड़ तब आता है जब राजा समझता है कि केवल बाहरी परिवर्तन से इंसान की असली पहचान नहीं बदलती। वह अपने मूल संस्कारों और सादगी को सबसे अधिक मूल्यवान मानता है। उसे एहसास होता है कि आत्म सम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है।

श्रोताओं, रीटा भी अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचती है। वह देखती है कि राजा के उसके लिए कितना संघर्ष किया है। उसने अपमान सहा, स्वयं को बदला और हर कठिनाई का सामना किया। दूसरी ओर समाज के तथाकथित सभ्य लोग उतने संवेदनशील और सच्चे नहीं हैं जितना राजा है। अंततः रीटा को यह समझ में आता है कि सच्चा प्रेम धन, शिक्षा या सामाजिक स्तर पर निर्भर नहीं करता। वह राजा की ईमानदारी, त्याग और सच्चे प्रेम को पहचानती है। उसे एहसास होता है कि जीवन में खुश रहने के लिए सबसे अधिक जरूरी है एक अच्छा इंसान मिलना। श्रोतो, कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब रीटा अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज़ सुनने का निर्णय लेती है। वे स्वीकार करती है कि राजा ही उसका सच्चा जीवन साथी है। दूसरी ओर राजा भी अपने आत्म सम्मान और प्रेम के बीच सही संतुलन स्थापित करता है। अंततः दोनों में प्रेम जीत जाता है। परिवार और समाज भी धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि इंसान की असली कीमत उसके चरित्र, ईमानदारी और प्रेम में होती है, न कि उसकी धन या सामाजिक हैसियत में। राजा और रीटा का मिलन इस संदेश के साथ होता है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है।

श्रोताओ, अगर हम बात करें इस फिल्म की पटकथा की, उसके संदेश की, दोस्तों ये फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक भेदभाव, वर्ग संघर्ष और मानवीय मूल्यों पर भी गहरी टिप्पणी करता है। ये दर्शाती है कि सादगी, ईमानदारी और सच्चे प्रेम की शक्ति किसी भी सामाजिक दीवार से बड़ी होती है। कश्मीर की सुंदर पृष्ठभूमि, भावपूर्ण संगीत और संवेदनशील कथनातक इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की यादगार प्रेम कहानियों में शामिल करता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म की मुख्य कलाकारों की, तो राजा शशि कपूर के रूप में उन्होंने अभिनय किया पात्रिका, और नंदा रीटा के रूप में उन्होंने अभिनय किया इस फिल्म का। और दोस्तों, हम इस फिल्म की और जानकारी दे दें तो बता दें कि ये फिल्म भारत के अंदर 5 नवंबर 1965 को रिलीज़ हुई। खैर दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत लेकर उपस्थित था आपका दोस्त जसवीर सिंह, और गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले से। आइए अब दीजिए इजाज़त अपने दोस्त जसवीर सिंह को।

9.2 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि की 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला धर्मशाला में जारी। अफगानिस्तान ने दिया भारत को 195 रन का लक्ष्य। महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड होंगे आमने सामने। और भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। 13.27 सेकंड के साथ बनाया नया रिकॉर्ड।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां धर्मशाला में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान के रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है और कप्तान शुभमन गिल 6 रन और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। ये श्रृंखला आगामी एक दिवसीय विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। और अब रुख कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप की ओर, जहां मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 5 गेंद शेष रहते 121 रन पर सिमट गई। उधर बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये खास रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच कल हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एस्बेस्टन में माहौल बेहद जोशीला रहने की उम्मीद है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में अनुभव और आक्रामक खेल का शानदार मिश्रण है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में जहां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा शुरुआत से ही मैच की गति तय कर सकती है, वहीं भारत के पास एक संतुलित गेंदबाजी क्रम भी है। इंग्लिश कंडीशन में रेणुका सिंह की स्विंग और दीप्ति शर्मा की निरंतरता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्रांति गौड़ भी इस मैच में अपनी चमक बिखेर सकती हैं। मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि बर्मिंघम में भारतीय प्रशंसकों से उत्साह की पूरी उम्मीद है।
2: आई थिंक बिकॉज द मैच इज इन बर्मिंघम और वहाँ पर आई थिंक सपोर्टर विल बी यू नो इक्वल बिकॉज वहाँ पर काफी सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी रहने वाले हैं और हमने बहुत सालों से उनको डोमिनेट करा है।
1: भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिक्स ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला हमेशा प्रेशर वाला होता है।
3: आई रिमेम्बर व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम इन द ड्रेसिंग रूम हैरी दे एक्चुअली स्पोक शी इज लाइक वी विल नॉट डिनाई इट देयर इज प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज यू वी नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वी नो व्हाट द फैंस एक्सपेक्ट इवन लाइक माय बिल्डिंग वॉचर वी लाइक किसी के साथ हारो पर पाकिस्तान के साथ मत हारो दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज दे लव क्रिकेट दे लव दिस राइवलरी।
1: भारतीय कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि इस फॉर्मेट में कोई भी गेंदबाज घातक साबित हो सकता है।

0: I'll be very neutral here. You know, I have to balance it out. I mean, every bowler on a given day, it's T20 cricket. So you, you know, it's the shortest version of the game and a game of chance. So, you know, on that particular day, any bowler would be a...
1: Dusri taraf, Fatima Sana ki kaptani mein Pakistan ki yuva team maidan par apni chhaap chhodne ki koshish karegi. Pakistani team mein spinner Sadia Iqbal aur Nida Dar ki bhumika aham hogi. Bharat is match mein jeet ka prabal daavedar mana ja raha hai. 2020 antarrashtriya mein Bharat ka हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं, इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोनों देशों के महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 2020 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में कल कौन सी टीम अंडर प्रेशर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
2: इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने T20 विश्व कप के समीकरण पर हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला से अपने विचार साझा किए।
3: नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में कल कौन सी टीम अंडर प्रेशर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
1: इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने T20 विश्व कप के समीकरण पर हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला से अपने विचार साझा किए।
2: नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है, तो कितना मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए ये सफर?
3: तो डिफिकल्ट तो सभी के लिए है, किसी एक टीम के लिए नहीं है, एंड सभी की दावेदारी है। 12 टीमों का अगर विश्व कप है तो 12 की 12 की दावेदारी है। हाँ, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कोई ज्यादा स्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है बाकी टीमों से, तो लेकिन ऐसा कोई क्लियर फेवरेट नहीं है कि यही टीम है जो खेलेगी या यही टीम है जो जीतेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको कम्पीट करना पड़ेगा, एंड वही स्थिति सभी के लिए, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी के लिए भी हो, सबके लिए सेम है।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि स्थिति लगभग सभी के लिए सेम है, मेंस क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो लगभग खत्म होती नजर आ रही है, तो वुमेन्स क्रिकेट में आपका इस पर क्या कहना है?
3: चैलेंजेस वही रहेंगे, सबका स्किल लेवल अलग रहता है, सबकी गेम प्लान अलग रहती है, लेकिन खेलने तो विश्व कप आए हैं, तो जितना कीन इंडिया रहेगी मुकाबला जीतने के लिए उतना पाकिस्तान भी रहेगा, एंड ऐसा कोई कंपैरिजन या सिमिलैरिटी नहीं है अदर देन द फैक्ट दोनों टीमें मैच खेलती हैं, यहाँ भी दोनों टीमें मैच खेलेंगी एंड कम्पीट करेंगी।
2: इंडिया टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक सीरीज खेली, भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पिच कंडीशन और मौसम को समझने का उनको मौका मिला है।
3: सिमिलैरिटी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आई थिंक मौसम का फर्क पड़ता है, किस तरीके से खेल चलता है, आप अपने घर से बाहर खेल रहे हैं तो यूज टू होने में थोड़ा सा समय लगता है ना। उसको भारतीय टीम, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में पहले भी खेले हैं, तो उनके लिए तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समय सबको लगता है। अब क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर है तो आई एम श्योर एडजस्ट हो चुकी होगी।
2: बल्लेबाजी की बात तो हम काफी करते हैं, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर की, बॉलिंग में ऐसे कौन से नाम होंगे जो भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
3: देखिए, T20 मुकाबले में सबका योगदान है, कोई ऐसे एक या दो गेंदबाज नहीं आएंगे जिसपे आप पूरा अपना दारोमदार रखते हैं। दारोमदार हम सिर्फ एक गेंदबाज रखते हैं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं, बट सब खिलाड़ियों की अपनी स्ट्रेंथ है, तो चाहे वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट हो लेड बाय दीप्ति शर्मा इन जर्मनी, या हमारा फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट हो लेड बाय क्रांति गौड़ एंड रेणुका, हर एक का रोल रहेगा और किसी का रोल ज्यादा या कम नहीं है, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके का T20 क्रिकेट हो गया है।
2: तो T20 खेल को समझते हुए सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर बात करें एक्स फैक्टर की, तो कौन भूमिका में नजर आएगा?
3: ऋचा घोष मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा भारतीय टीम के लिए, कि ऋचा घोष किस तरीके से इस विश्व कप में खेल पाती है या उनको कितना खेलने का अवसर मिल पाता है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं मेरी। मेरे को लगता है कि वो एक एक्स फैक्टर तो नहीं कहूंगी, क्योंकि पहले हमें वो तो कंसिस्टेंट मेंबर है भारतीय टीम की, लेकिन हाँ उनपे थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, उनसे ज्यादा मुझे रहेगा कि वो गेम चेंजर वाला रोल खेल सकती है।
2: हमने बात करी ग्रुप ए की, लेकिन ग्रुप बी में आपको ऐसी कौन सी दो टीमें लगती है जो आगे जा सकती है?
3: हाँ, फिलहाल तो इंग्लैंड मुकाबला जीत चुकी है तो वो अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन है तो आप उनकी तरफ जरूर देखेंगे, लेकिन जो बाकी टीमें भी हैं, वेस्ट इंडीज आप उनको हटा नहीं सकते पिक्चर से, तो मैंने कहा जैसे कि 12 टीमें हैं वो सब दावेदारी के साथ आई और अच्छा खेलना चाहेंगी। हाँ, दो ही जा सकती हैं आगे हर पूल से आगे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे पूल में वेस्ट इंडीज भी है और वो भी एक अच्छी अच्छी टीम है, अच्छा खेल दिखाएगी, सो वेरी कीन कि स्कॉटलैंड कैसे खेलता है और आयरलैंड कैसे निकल कर आता है वहां से।
2: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
1: और अब बात बैडमिंटन की। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। एशियन गेम्स इस वर्ष जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: मेडलिस्ट पीवी सिंधु और एशियन गेम्स 2022 में पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के हालिया नतीजों और 26 मई 2026 तक की BWF रैंकिंग को देखने के बाद टीम को मंजूरी दी। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली इस टीम में अनुभवी HS प्रणॉय और किदांबी श्रीकांत भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एडिशन में भारत के ऐतिहासिक सिल्वर मेडल में अहम भूमिका निभाई थी। पुरुषों की टीम में इस साल के BWF थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने वाले अधिकतर मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले आयुष शेट्टी, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की इंडिविजुअल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तन्वी शर्मा और टीम चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली उन्नति हुड्डा को

0: इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन के बाद चुना गया। पुरुषों की डबल्स टीम में हरिहरन अमसाक करुणन और एमआर अर्जुन मजबूत फॉर्म में हैं। अर्जुन के पास 2022 के पुरुषों की टीम इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल जीतने का अनुभव भी है। महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौतियों की अगुवाई कर रही हैं, जिन्हें सिमरन सिंघी और कविप्रिया सेल्वम का साथ मिल रहा है। थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 चैंपियन देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ और थारून मन्नेपल्ली के साथ मिलकर भारत की सिंगल्स की ताकत को और बढ़ाती है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो डबल्स स्क्वाड में अतिरिक्त कौशल और अनुभव लाते हैं। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भारत सभी 5 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। सेन और शेट्टी पुरुषों की सिंगल्स में हिस्सा लेंगे, जबकि सिंधु और हुड्डा महिला सिंगल्स की अगुवाई करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज चिराग और हरिहरन अर्जुन मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में ट्रिसा गायत्री और कविप्रिया सिमरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शीर्ष मिक्स डबल्स टीम में ध्रुव और तनिषा भी हिस्सा लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैट।
1: उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को 22-20, 21-12 से हराया। अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। सुनते हैं मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: अमेरिका की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। अमेरिका की टीम पूरे मैच में हावी नजर आई और पराग्वे को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। अमेरिका के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही। मुकाबले के 7वें मिनट में ही अमेरिका ने 1-0 की बढ़त बना ली। डेमियन बोबाडिला ने पराग्वे के डिफेंस को भेदते हुए बेहतरीन गोल दागा। मैच के 31वें मिनट में फोलारिन बालोगुन ने अमेरिका की बढ़त को 2 कर दिया। फोलारिन के शानदार स्किल्स के सामने पराग्वे का डिफेंस पूरी तरह बेबस दिखाई दिया। पहले हाफ में फोलारिन का एक बार फिर दमदार खेल देखने को मिला और उन्होंने अमेरिका को मुकाबले में 3-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में ही अमेरिका की जीत लगभग पक्की हो गई। हालांकि दूसरे हाफ में पराग्वे ने आक्रामक खेल दिखाया और वापसी का प्रयास किया। टीम को मैच के 73वें मिनट में सफलता हाथ लगी। पराग्वे के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मॉरिसियो ने पराग्वे के लिए मैच में पहला गोल दागा। इसके बाद अमेरिका ने अपने खेल में आक्रामकता बढ़ाई और पराग्वे के डिफेंस पर लगातार दबाव डाला। काफी प्रयास करने के बावजूद पराग्वे की टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। निर्धारित 90 मिनट के बाद स्टॉपेज टाइम में गियोवानी रेयना ने अमेरिका की बढ़त को 4-1 कर दिया। उन्होंने मैच की आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले पराग्वे के डिफेंस को एक बार फिर भेदा और अमेरिका की दमदार जीत पर मोहर लगा दी। फोलारिन बालोगुन 1930 के बाद फीफा विश्व कप में 2 गोल करने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बन गए और इस जीत के साथ ही अमरीका ने टूर्नामेंट का आगाज शानदार अंदाज में किया और टीम इस लय को आने वाले मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: और अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। तेजस ने 13.27 सेकंड में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस पूरा करते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग के पहले मुकाबले में कल मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए। शुभमन गिल ने 15 और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

0: के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट

0: किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार है पंकज उदास। आइए सुने इन्हीं की एक और गजल।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने पंकज उदास की आवाज में एक और गजल।

श्रोताभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार थे पंकज उदास। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख

0: जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता

0: एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
0: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के

0: देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
0: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
1: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
0: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
0: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी

0: दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
1: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
0: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी? कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
1: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहाँ लेवल अच्छा नहीं होगा, जहाँ चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
0: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है। बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से। और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है

0: हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना, अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है ये। आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूज़िक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं,
1: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव डेट,
1: जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
0: जी
1: आपने एक नया
0: जी
1: टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayan itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग, कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व

0: को बड़े विस्तार से बताया।
1: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
2: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
3: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakha's Alarcha.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
3: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि की 10 बजे हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
5: शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आप

0: कि संगीत के प्रति अटूट समर्पण अनुशासन और जुनून को दर्शाता है जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Aditala.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the...
2: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।

0: एड्स मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded.